0: Championship in Lima, Peru. And that is what we say, a perfect team, Abhinav, a perfect combination to start the day on a sweet note for India.
1: जी हाँ, बेहतरीन शुरुआत इंडिया के लिए. एंड वो बेहतरीन शुरुआत एमएमए में भी हमें मिली है, क्योंकि एक और मेडल आया है एमएमए से. ऑफिशियली वी हैव अ ब्रॉन्ज मेडल. सुचिका तरियाल फॉट रियली हार्ड टियो हुई हुन अगेंस्ट सिंगापुर. एंड तक शी वॉज इन द कॉन्टेस्ट, बट अनफॉर्चुनेटली लॉस दैट बाउट 2-0. सुचिका वॉज हार्ट ब्रोकन, विजिबली अपसेट एंड इमोशनल. बट सुचिका बक अप, लॉन्ग वे टू गो, एंड यू हैव गिवन इंडिया अ लॉट ऑफ प्राइड एंड समथिंग विच रियली बोड्स वेल फॉर द फ्यूचर. सो एन ऑफिशियल ब्रॉन्ज देयर फॉर इंडिया आफ्टर द आउटस्टैंडिंग सिल्वर इन शूटिंग. एंड ऑल्सो साक्षी, गुड न्यूज आ रही है टेबल टेनिस से.
0: हाँ जी, गुड न्यूज आ रही है अभिनव, आपने अच्छा बोला, टेबल टेनिस की दुनिया से, बिकॉज इंडिया कंप्लीटेड अ 3-0 विन ओवर पाकिस्तान इन द वुमेन्स टीम टेबल टेनिस टाई. जी हाँ, श्रीजा अकुला सील्ड द विक्ट्री विद अ स्ट्रेट गेम्स विन ओवर फातिमा खान 11-4, 11-4, 11-5, एंड देयर बाय इंडिया फिनिश्ड एज ग्रुप एफ विनर्स एंड एडवांस टू द क्वार्टर फाइनल्स. एक बहुत जरूरी कॉन्ट्रीब्यूशन, एक ऐसा नाम यहाँ पर मैं लेना चाहूंगी दोस्तों, जिसको हम बिल्कुल भी भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि उनका योगदान इस भारतीय जीत में बहुत अहम किरदार निभा गया. मैं बात कर रही हूँ सिंड्रेला दास की, हु वॉज ऑन हर एशियन गेम्स डेब्यू एंड शी बीट कलुसुम खान 11-6, 11-7, 11-5 इन अ कंफर्टेबल स्ट्रेट गेम्स विक्ट्री, देयर बाय हेल्पिंग इंडिया गेन एन अर्ली एडवांटेज ऑफ अ 2-0 अर्लियर विन ओवर पाकिस्तान. एंड फाइनली भारत ने पाकिस्तान को 3-0 से हराकर ये जीत अपने नाम तय कर ही ली.
1: ऑफकोर्स, और जीत हमें मिली है सॉफ्ट टेनिस में भी. आध्या तिवारी एंड जे मीना, तीन मैचेस थे आज, मंगोलिया को हराया, कंबोडिया को हराया, बट साउथ कोरिया से हारने के बावजूद भी इंडिया हैज फिनिश्ड सेकंड इन द ग्रुप एंड दे हैव एडवांस्ड टू द राउंड ऑफ 16. सो सॉफ्ट टेनिस इज समथिंग व्हिच द इंडियंस कुड गेट अ मेडल इन द फ्यूचर.
0: जी, और अब थोड़ी सी यहाँ पर निराशाजनक खबर आपको दूंगी स्विमिंग की दुनिया से, बिकॉज धनुष सुरेश मिस्ड आउट ऑन द मेंस 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक फाइनल, फिनिशिंग 22nd ओवरऑल विद द टाइम ऑफ 1:03.46. दैट लीव्स श्रीहरि नटराज एज इंडियाज ओनली स्विमर इन द फाइनल टुडे विद द मेंस 50 मीटर बैक स्ट्रोक फाइनल स्टिल टू कम. एंड देर आर मैनी मोर, as we say, swimming events lined up for the day. But as we say, the day has just started and we are hoping this is going to turn out to be one of the best days in the early start of the Asian Games 2026. With that, for me right now, Abhinav aur mujhe Sakshi ko dijiye ijazat. Hum aapke liye live updates laate rahenge with the next update coming at 10:30 a.m. on Akashvani. Asian
2: நேர்கள் இதுவரை கேட்டீர்கள் ஜப்பானில் நடைபெற்ற 20th ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் 2026 குறித்த தினசரி கள நிலவரம். டெல்லியிலிருந்து அஞ்சலாக கேட்டீர்கள்.

0: Hello and a very warm welcome to the 10:30 a.m. update of the ongoing live coverage of the Asian Games happening in Aichi, Nagoya, Japan 2026. और दोस्तों आज की खुशखबरी बस बढ़ती ही चली जा रही है क्योंकि शूटिंग की दुनिया से अभी तक कुल मिलाकर 4 सिल्वर मेडल्स और 1 ब्रॉन्ज मेडल आ चुका है. और अगर आज की खास तौर से बात करें तो आज शूटिंग की दुनिया में हमने देखा किस तरह से 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज आया. एंड द बेस्ट न्यूज दैट केम वॉज फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ इंडिविजुअल शूटिंग के अंदर, जिसमें 10 मीटर एयर राइफल में हमने देखा कि हिमांशु ढिल्लो ने ही फिनिश्ड विद अ स्कोर ऑफ 252.4 फिनिशिंग सेकेंड. वो हमारे लिए लेकर आए सिल्वर मेडल. और वहीं रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल बॉट अस द ब्रॉन्ज विद अ स्कोर लाइन ऑफ 230.9. चाइना के शेंग लिहाओ वन द गोल्ड मेडल विद 254.2. That was one of the best news over here with us today this morning, Abhinav, indeed.
1: Of course, excellent news from the world of shooting, Sakshi, because shooting mein hame team event mein bhi, 10 meters air rifle team event mein bhi, we got silver. Rudraksh Patil, Himanshu Dhillon and Parth Mane. याद दिलाएं, हिमांशु ढिल्लों ने अपना एशियन गेम्स का डेब्यू कर रहे हैं, तो शानदार शुरुआत हुई है उनकी और शानदार शुरुआत हुई है इंडिया की शूटिंग से.
0: जी, और अभिनव थोड़ा आप हमारे आज श्रोताओं को स्कीट के बारे में बताना चाहेंगे, जो स्कीट के भी शूटिंग के इवेंट्स चल रहे हैं, एक खुशखबरी वहां से भी थोड़ी दी जाए.
1: जी हाँ, शूटिंग के स्कीट मेंस टीम फाइनल में इंडिया के भवतेश सिंगल, एजेएस नरुका और मेहराज अहमद खान स्कीट के फाइनल में है. अभी 5th पोजिशन में करंट अपडेट है इंडिया का स्कीट में, तो होपफुली दे इम्प्रूव.
0: Yeah, a long way still up ahead for our Indian shooters. लेकिन शूटिंग की दुनिया से अब दोस्तों थोड़ा आगे बढ़ते हैं. एंड लेट्स ऑल्सो लुक एट वॉट हैपेंड इन रेगु टुडे. एंड नॉट मच गुड न्यूज़ ओवर देयर, बिकॉज जापान ने वहाँ पर भारत को 3rd और फाइनल ग्रुप बी मैच में टीम रेगु इवेंट के अंदर 2-1 से हरा दिया. येस, द रिजल्ट मेंट दैट जापान वन द ओवरऑल टाई 2-1 विद इंडिया हैविंग टेकन द ओपनिंग मैच अर्लियर इन द कॉन्टेस्ट. तो शुरुआत में जीत 1 राउंड के अंदर हमें हासिल तो हुई थी, लेकिन जापान अंत में बाजी मार गया भारतीयों के हाथ से.
1: जी हाँ, रेगू में तो इंडिया की अच्छी आज शुरुआत नहीं हुई है, मगर बॉक्सिंग में शानदार शुरुआत. मेन 70 kg राउंड ऑफ 32 में सुमित कुंडू ने अपना मैच जीता थाईलैंड के बैनजोंग सिनसिन के खिलाफ 5-0. जजेस ने परफेक्ट स्कोर दिया इनको ऑफ 10 इन ऑल द राउंड. सो अ सुपर्ब स्टार्ट फॉर सुमित देयर. एंड Sakshi, superb start for the Indian women in their hockey match.
0: Indeed, and what a start, pretty much on the expected lines ki aaj Bharat ek bahut overwhelming performance and strong commanding performance dikhayega, and that is how they are turning out to be against Indonesia. Barrage of goals Indian women's team ki taraf se have taken India to a 9-0 lead in the first half. And uske baad agar hum baat kare to first half ke baad bhi jab khiladi wapas aaye hain to bhartiya khiladiyon ne fir se apna दबदबा दोस्तों दिखाना शुरू

0: कर दिया है, 2-0 की लीड ले चुकी है अगेंस्ट इंडोनेशिया। ऋतुजा पिस्ला, लारे सैमी, साक्षी राणा आर गोल स्कोरर्स फॉर द डे। अ वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कमांडिंग स्टार्ट बाय इंडियन वुमेन हॉकी टीम।
1: जी हाँ, हाफ टाइम पे 6-0 स्कोर है इंडिया और इंडोनेशिया का हॉकी मैच में। मगर कबड्डी की बात करी जाए तो आज इंडिया का मैच जापान के साथ चल रहा है ग्रुप ए में। जापान की शुरुआत अच्छी थी बट इंडिया इज इन टोटल कंट्रोल राइट नाउ। 42-17 से इंडिया लीड कर रहा है आज जापान के अगेंस्ट। ट्रिमेंडस स्टार्ट फॉर इंडिया। एंड ऑफकोर्स हम मेडल्स की बात करें तो हमारे पास एक और मेडल आज गारंटीड हुआ है, वो है ब्रॉन्ज मेडल। एंड साक्षी, ट्रिमेंडस एफर्ट देयर बाय सुचिका तरियाल।
0: यस इंडीड, बट ऑल्सो अगर बात करें तो आज हम सभी ने देखा किस तरह से उनकी आंखें अभिनव नम हो गई थी लास्ट में, बिकॉज शी वॉज होपिंग टू नॉट गेट द ब्रॉन्ज बट रैदर गो फॉर द सिल्वर फॉर इंडिया। बट वी हैड टू सेटल इन विद द ब्रॉन्ज। अ वेरी हार्ट फेल्ट एफर्ट बाय द यंग गर्ल ओवर देयर फॉर इंडियंस। डेफिनेटली उनके लिए आगे उनका भविष्य भारतीय खेल और भारतीय दुनिया में बहुत ज्यादा ब्राइट है। हियर्स टू हर मेकिंग इंडियंस प्राउड, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अ मेडल इज अ मेडल, एंड फॉर दैट हार्ट फेल्ट विन दैट शी बॉट फॉर इंडिया टुडे, हियर्स अस अपलोडिंग हर एफर्ट्स। विद दैट आई थिंक अभिनव, अभी वक्त हो गया अपने श्रोताओं से इजाजत भी लेने का।
1: जी हाँ, एंड प्लीज ट्यून इन बैक विद अस एट 11:30 AM। आपका नेक्स्ट अपडेट आएगा आकाशवाणी पे। इंडिया इज राइट नाउ 10th ऑन द मेडल्स टेबल, 6 मेडल्स हैव ऑलरेडी कम, होपिंग फॉर मच मोर। स्टे ट्यून टू आकाशवाणी।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

0: score was the final score. All-round performance from the Indian team. So an excellent start. Aapke saath hai Abhinav Punshi and mere saath hai Sakshi Manwal. And Sakshi, also good news coming in from the hockey arena.
1: Indeed, Abhinav, खुशखबरी का सिलसिला आज जारी रहेगा और रहना चाहिए बिकॉज भारत ने आज इंडोनेशिया को हरा कर इन अ वेरी कमांडिंग एंड कॉन्फिडेंट मैनर 17-1 से विक्ट्री को अपने नाम कर लिया इन द वुमेन्स हॉकी मैच. लेट्स ऑल्सो नॉट फॉरगेट दैट इंडिया हैड ऑल्सो डिफीटेड उज्बेकिस्तान रिसेंटली इन द ऑन गोइंग एशियन गेम्स एंड दैट वॉज 19-0. वन इम्पॉर्टेंट नेम दैट स्टूड आउट इन द लास्ट गेम एंड ऑल्सो टूडे वॉज दीपिका सहरावत. लेट्स रिमाइंड listeners over here that Deepika Sehrawat had scored a record-breaking 8 goals, setting a high for individual goals in the women's hockey match at the Asian Games last time in the match against Uzbekistan. And today also, she proved to be a very important contributor in the goal-making for India, along with Sunilita Topo, Ruturaj Bisal, Sakshi Rana, Salima Tete and Navneet Kaur, amongst other Indian goal scorers. Abhinav.
0: Excellent news from Kabaddi as well as the hockey arena. Magar soft tennis mein disappointment. Aditya Tiwari aur Jay Meena performance achhi thi apne group stages mein. Mongolia ko haraya, Cambodia se ko bhi haraya. Matlab South Korea se haarne ke baad round of 16 match mein India fell to defeat against the Philippines 2-5. To quarterfinals mein nahi pravesh kar paye Aditya Tiwari aur Jay Meena. Magar ab hum jaate hain shooting ki taraf and shooting se update denge aapko Sakshi.
1: जी थैंक यू अभिनव. और शूटिंग की अगर हम बात करें तो वुमेन्स स्कीट शूटिंग के अंदर आज पहले दिन की समाप्ति पर भारतीय टीम तीसरे स्थान पर टीम इवेंट में उन्होंने अपना आज का दिन समाप्त किया है. वहीं अगर हम मेंस टीम इवेंट की बात करें तो उसमें भारतीय टीम ने पांचवें स्थान पर पहले दिन की समाप्ति पर आज अपना प्रदर्शन समाप्त किया है. टीम स्टैंडिंग्स में चाइना रही नंबर एक पर 143 के साथ, कजाकिस्तान रहा नंबर दो पर 138 पॉइंट्स के साथ और वहीं भारत रहा 132 पॉइंट्स के साथ तीसरे स्थान पर वुमेन्स स्कीट शूटिंग टीम इवेंट के अंदर पहले दिन की समाप्ति पे.
0: जी हाँ, स्कीट इवेंट तो तीन दिन तक चलेगा मगर शूटिंग में मेडल्स आए हैं और क्या मेडल्स, क्या परफॉर्मेंस. पहले शुरुआत हुई थी आज दिन में 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में जिसमें रुद्राक्ष पाटिल, हिमांशु डिलन और पार्थ माने ने इंडिया को एक सिल्वर मेडल दिलाया. और बस वो ही नहीं, उसके बाद 10 मीटर्स एयर राइफल फाइनल में मेंस में रुद्रांश पाटिल को ब्रॉन्ज और हिमांशु डिलन जो अपना एशियन गेम्स का डेब्यू कर रहे हैं सिल्वर मिला. और पहली बारी हमें 2026 में पोडियम में दो भारतीय दिखे, हिमांशु डिलन और रुद्रांश पाटिल. तो शानदार शुरुआत हमारी हुई है शूटिंग में.
1: यस इंडीड, एंड वी एक्सपेक्ट नथिंग लेस देन आवर शूटर्स बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग मोर मेडल्स टू कम फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ शूटिंग एज द एशियन गेम्स प्रोग्रेसेस फर्दर. लेकिन अब थोड़ा सा एक छोटा सा अपडेट लेकर आते हैं एमएमए की दुनिया से भी बिकॉज हमें तो आज पता है कि सुचिका तारियाल जो भारत की तरफ से एमएमए में आज इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी, शी हैड लॉस्ट द सेमी फाइनल ऑफ द वेमेन 60 किलोग्राम अगेंस्ट अ सिंगापोरियन अपोनेंट हुन हुई त्यो. दो एट द एंड ऑफ द डे शी वॉज एबल टू ब्रिंग इंडिया द कविटेड ब्रॉन्ज मेडल. बट यहां पर निराशाजनक खबर जो आई एंड एज पर रिपोर्ट्स दैट हैव बीन पोरिंग

0: in, the match was awarded to the Singapore fighter. The Indian camp protested and eventually the match was called a draw. अब इसके बाद क्या हुआ, क्योंकि भारतीय कैंप की तरफ से प्रोटेस्ट आई, तो इन द इवेंट ऑफ अ ड्रॉ द रूल दैट हुएवर इज लाइटर किक्ड इन एंड सुचिका, जो कि सिर्फ 700 ग्राम ज्यादा थी वजन में अपने अपोनेंट से, वो इस मैच को हार गई. और एज पर रिपोर्ट्स शायद यही वजह रही कि भारत को आज ब्रॉन्ज मेडल के साथ यहाँ पर संतुष्टि करनी पड़ी. शायद इसी वजह से आज वो काफ़ी निराशाजनक निराश भी दिखी थी और उनकी आंखों से आज अभिनव काफ़ी ज़्यादा आंसू भी गिर रहे थे.
1: जी हाँ, हार्ट ब्रेकिंग देयर फॉर सुचिका. मगर मेडल्स टैली में भारत अब 10th पोजीशन पे है विद 6 मेडल्स सो फार, 4 सिल्वर्स एंड 2 ब्रॉन्ज. शूटिंग हैव बीन सेंसेशनल फॉर इंडिया एंड लॉट मोर मेडल्स एक्सपेक्टेड. और याद दिलाएं आपको सारे अपडेट्स आईची नगोया से लेकर हम आएंगे एवरी आवर. अगला अपडेट होगा 12:30 PM पे. आप प्लीज स्टे ट्यून टू आकाशवाणी, होपिंग फॉर मोर मेडल्स फ्रॉम द इंडियन कंटिजेंट.
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया.
3: நேர்கள் இதுவரை கேட்டீர்கள் ஜப்பானில் நடைபெற்ற 20th ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் 2026 குறித்த தினசரி கள நிலவரத்தை. டெல்லியிலிருந்து அஞ்சலாக நேர்களை தொடர்கிறது மணி திருநாட நிகழ்ச்சி.

0: फॉर स्टार्टिंग दिस सेशन जो हम लाइव अपडेट्स का लेके आ रहे हैं खुशखबरी के साथ, विच इज फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ बैडमिंटन. अब शूटिंग की अगर हम बात करें तो वुमेन्स स्कीट शूटिंग टीम इवेंट आज हुआ और वहीं मेन्स स्कीट शूटिंग टीम इवेंट भी हुआ. तो चलिए पहले वुमेन्स स्कीट शूटिंग टीम इवेंट की बात कर लेते हैं. वहां पर रायजा ढिल्लो ने सिर्फ 21 अंक कलेक्ट करे थे अपने दूसरे राउंड से, लेकिन उनका जो एग्रीगेट स्कोर अंत में बना वो था 46 पॉइंट्स का और इसके साथ उन्होंने अपना पहला दिन आज समाप्त किया 9वें स्थान पर. वहीं परिनाज धालेवाल ने अपना पहला दिन स्कीट शूटिंग टीम इवेंट के अंदर 43 पॉइंट्स के साथ 14th स्पॉट पर समाप्त किया. तो अगर देखें तो जो भारतीय महिलाएं थी उनका पहला दिन आज समाप्त हुआ टीम इवेंट में तीसरे स्थान पर. पहले स्थान पर रहा चाइना 143 अंकों के साथ, कजाकिस्तान आज दूसरे स्थान पर बना हुआ है 138 अंकों के साथ और भारत की महिलाएं रही तीसरे स्थान पर 132 अंकों के साथ. अब अगर हम मेंस स्कीट शूटिंग टीम इवेंट की भी बात कर लेते हैं तो वहां कुछ ज्यादा अच्छी खबर मैं आपके लिए लेकर नहीं आ रही हूं आज दोस्तों, क्योंकि भारतीय मेंस स्कीट शूटिंग टीम इवेंट के अंदर अनंतजीत सिंह नारुका ने हाईएस्ट प्लेस इंडियन बने वो 21वें स्थान पर 47 अंकों के साथ. अब आप ये सोचिए, और दूसरी तरफ मेराज अहमद खान 26वें स्थान पर रहे और भवतेक सिंह गिल 27वें स्थान पर रहे. तो अगर ओवरऑल देखें तो मेंस स्कीट शूटिंग टीम इवेंट के अंदर भारतीय टीम ने आज 6th स्पॉट पर समाप्त किया 136 अंकों के साथ. कतर रही 145 अंकों के साथ, जो भारत के से, अगर भारत से हम कंपैरिजन करते हैं तो भारत से एक स्थान ऊपर है. तो ओवरऑल मेंस की शूटिंग टीम इवेंट में हमारे मेन शूटर्स का प्रदर्शन बहुत ज्यादा ऐसा नहीं रहा कि हमारा दिल खुश कर दिया. अभिनव
1: ऑफ कोर्स, मगर दिल खुश तो करा है हमारी कबड्डी टीम ने. अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस बाय द इंडियन मेंस कबड्डी टीम, ऑल राउंड परफॉर्मेंस. And they beat Japan 49-24, comprehensive win. और Aichi Nagoya Asian Games में ऐसे ही हमें प्रदर्शन चाहिए हमारे men's कबड्डी टीम से, और ऐसे ही प्रदर्शन हमें मिल रहे हैं हमारी women's hockey टीम से जो साक्षी गोल स्कोरिंग स्प्री पे हैं.
0: जी हाँ जी, द बेस्ट न्यूज आर हॉकी टीम, वुमेन्स हॉकी टीम आज एक बार फिर से कमाल करते हुए इंडोनेशिया के खिलाफ, जहां पर हमारी भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ियों ने आज इंडोनेशिया को 17-1 से पराजित किया. अ कमांडिंग विक्ट्री जिसको हम बोलते हैं. और मत भूलिएगा जो पहला मुकाबला था भारतीय महिलाओं का हॉकी में उज्बेकिस्तान के खिलाफ, उसमें भी भारतीय महिलाओं ने 19-0 से उज्बेकिस्तान की महिलाओं को हराया था. एक नाम जो सबको हमेशा याद रहेगा और रहना भी चाहिए वो है दीपिका सहरावत का, जिन्होंने पहले मैच में, पहले मुकाबले में उज्बेकिस्तान के खिलाफ दोस्तों एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग 8 गोल दागे थे भारत के लिए, सेटिंग अ हाई फॉर इंडिविजुअल गोल्स इन अ वुमेन्स हॉकी मैच. और आज भी उनका योगदान रहा है भारत की इस जीत में इंडोनेशिया के खिलाफ, वो भी काबिले तारीफ रहा. उनके साथ कुछ और नाम जो हम सबको याद रखने चाहिए जिन्होंने आज भारत की इस जीत में योगदान दिया है, वो है ऋतुजा पिसल, साक्षी राणा, सालिमा टेटे, नवनीत कौर, इशिका चौधरी, और भी काफी सारे नाम है जो हम आपके लिए लेकर आएंगे और लाते भी रहेंगे. लेकिन फिलहाल वक्त है अभिनव कि हमारे सारे ही श्रोताओं के चेहरों पर हमने जो एक छोटी सी हंसी छोड़ी है खुशी वाली, वो हंसी हम बरकरार रहने दें.
1: जी हाँ, क्योंकि आज हुआ है धमाकेदार प्रदर्शन हमारे शूटर्स का. मेंस 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में इंडिया को मिला सिल्वर मेडल, रुद्रांश पाटिल, हिमांशु ढिल्लन और पार्थ माने, और उसके बाद कमाल और धमाल दिखाया हमारे मेंस 10 मीटर इंडिविजुअल एयर राइफल में, जब रुद्रांश पाटिल को मिला ब्रॉन्ज और हिमांशु को मिला अपने एशियन गेम्स डेब्यू पे एक और मेडल, वो भी सिल्वर. एंड साक्षी एमएमए की दुनिया में

0: भी हमने कमाल दिखाया।
1: जी, हमने एमएमए की दुनिया में भी कमाल दिखाया, लेकिन कहेंगे ना कि अगर एमएमए की दुनिया में हमने कमाल दिखाया भी, तो ऐसा कमाल दिखाया कि थोड़ा सा हो सकता है सारे फैंस के, सारे चाहने वालों के मन में एक हल्की सी कसक रह गई हो, लेकिन मुबारकबाद तो देनी बनती है क्योंकि सुचिका तारियाल हमारे लिए, भारतीय सारे फैंस के लिए आज ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई हैं। इसके ऊपर और बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से अंतराल का। हम आपके लिए लाइव अपडेट्स लेकर आते रहेंगे दोस्तों। एक बार फिर से हम आपको मिलेंगे 1:30 बजे आकाशवाणी पर विद द ऑन गोइंग लाइव अपडेट्स ऑफ द एशियन गेम्स 2026।
2: திருநெல்வேலி பண்பலை 102.6 ஸ்நேகிதியே இந்நிகழ்ச்சியை வழங்கிக் கொண்டிருப்போர் வசந்தன்கோ.

0: இன்னும் சில நொடிகளில் ஜப்பானில் நடைபெற்ற 20வது தேசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் 2026 குறித்த தினசரி கள நிலவரம்
1: கேட்கலாம்.
2: Hello and a very warm good afternoon to all the listeners of Akashvani. मैं हूँ साक्षी मांडवाल और मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं अभिनव, जो आज हम दोनों आपके लिए एशियन गेम्स के बीच में सारे लाइव अपडेट्स लेकर आने वाले हैं. तो चलिए सबसे पहले अब इस पर्टिकुलर अपडेट की शुरुआत करते हैं एक अच्छी खबर.

0: पर के साथ। बैडमिंटन की दुनिया में भारतीय शटलर्स ने आज बैडमिंटन में भारत के लिए एक शानदार प्रदर्शन देकर भारतीय शटलर्स और बैडमिंटन की दुनिया में आगाज दिया है। जी हाँ, ऑल द थ्री शटलर्स लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी एंड किदांबी श्रीकांत, ऑल थ्री ऑफ देम वेंट ऑन टू विन देयर रिस्पेक्टिव गेम्स एंड देयर बाय हेल्प्ड इंडिया एडवांस टू द क्वार्टर फाइनल्स बाय गेटिंग अ 3-0 क्लीन विक्ट्री। वेरी स्पेसिफिकली लक्ष्य सेन डिफीटेड आयमन जमान इन स्ट्रेट गेम्स 21-4, 21-12। Ayush Shetty went on to defeat Gaurav Singha 21-4, 21-13, thereby putting India in a commanding position of 2-0 already and also a winning position. And finally, Srikanth Kidambi came into play and defeated his opponent Al-Amin Jumar 21-15 and 21-9. India now faces Japan in the quarterfinals, Abhinav.
1: शानदार शुरुआत भारतीय बैडमिंटन टीम से। और अब बात करें स्विमिंग की, तो स्विमिंग अरीना में तैयार रहिए क्योंकि श्रीहरि नटराज इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 50 मीटर बैकस्ट्रोक फाइनल में। श्रीहरि नटराज स्टार्टिंग पोजीशन उनकी 9th है, मगर बहुत कोशिश कर रहे हैं बहुत सालों से भारत को एक मेडल दिलाने के लिए। क्या आज श्रीहरि नटराज का दिन होगा? सारी नजरें हमारे इंडियन स्विमर पर है
0: जी। और श्रीहरि नटराज को सारे ही भारतीयों की तरफ से विशिंग ऑल द वेरी बेस्ट फॉर गिविंग अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस एंड आउटपुट टुडे। मूविंग ऑन टू द वर्ल्ड ऑफ टेबल टेनिस आल्सो, टेबल टेनिस को दुनिया को बता दें कि भारतीय महिलाओं ने भी आज कमाल कर दिया क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को 3-0 से परास्त करके वुमेन्स टीम टेबल टेनिस टाई को जीत कर अपने नाम कर लिया। श्री जाकुला ने जीत हासिल करी फातिमा खान को हराकर 11-4, 11-4, 11-5 से। और फाइनली भारत ने ग्रुप एफ के विनर्स के तौर पर आगे बढ़कर अपने नाम को अर्जित करवाया क्वार्टर फाइनल्स की रेस में। एक बहुत जरूरी नाम जो मैं यहां पर लेना चाहूंगी, कहूं अहम नाम दोस्तों, वो है सिंड्रेला दास का, हु वॉज ऑन अ एशियन गेम्स डेब्यू टुडे। और उन्होंने कलसूम खान को 11-6, 11-7, 11-5 से हरा कर भारत को एक कमांडिंग पोजिशन में पाकिस्तान के खिलाफ लाकर खड़ा किया था। और इसी बुनियाद पर भारत को पहले 2-0 से एक एडवांटेज मिल गई थी अभिनव, जिसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार से श्रीजाकुला ने फाइनली 3-0 से पाकिस्तान को हरा कर ये टाई अपने नाम करवा लिया।
1: और जो विमेन्स टीम ने करा है, क्या मेन्स टीम यही करेंगे आज? क्योंकि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होने वाला है आईची नगोया में एशियन गेम्स में। ये ग्रुप इंकाउंटर है 3:30 बजे, इंडिया और पाकिस्तान एक्शन में देखेंगे। याद दिलाएं, इंडियन मेंस टीम हारे थे ईरान के खिलाफ, तो आज क्या इंडिया कमबैक करेगी?
0: वेल, होपिंग फॉर द बेस्ट। लेकिन दोस्तों आपको ये भी बता दें कि आज और क्या क्या इवेंट्स आप देख पाएंगे आज के दिन में। पहले शुरुआत करेंगे थोड़ी ही देर में वुशु के साथ, जिसमें वुमेन्स सैंडा के 60 किलोग्राम कैटेगरी के अंदर रोशी बिना देवी भारत को रिप्रेजेंट करते हुए आपको दोपहर 2:30 बजे नजर आएंगी। और वुशु के अंदर ही मेन सैंडा 56 किलोग्राम कैटेगरी में आर्यन भारत को रिप्रेजेंट करते हुए आएंगे दोपहर 2:30 बजे से भारतीय स्टैंडर्ड टाइम पर।
1: और आज कबड्डी में इंडियन मेंस टीम ने तो जापान को हराया 49-24, शानदार शुरुआत भारतीय मेंस कबड्डी टीम की। मगर विमेन्स कबड्डी टीम भी एक्शन में देखेंगी 4:15 बजे, जब उनका मुकाबला होगा बांग्लादेश के साथ। तो हम चाहेंगे कि आज कबड्डी में क्लीन स्वीप हो, क्योंकि आज इंडिया का मेडल्स टैली तो शानदार रहा है। एंड इट्स बीन अ ग्रेट डे फॉर इंडिया एज फार एज द मेडल्स आर कंसर्न।
0: यस इंडीड। एंड व्हेन वी से ऑफ मेडल्स, शूटिंग की दुनिया को हम क्यों भूलें, सबसे ज्यादा मेडल्स तो अभी तक उसी इवेंट के अंदर से हमारे पास आए हुए हैं। 4 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज, जिसमें 2 सिल्वर कल हमारे शूटर्स ने अपने नाम किए थे और 2 सिल्वर आज हमारे शूटर्स ने अपने नाम किया, और उसके साथ साथ 1 ब्रॉन्ज मेडल भी भारत को दिलवाया। कुल मिलाकर शूटिंग में अभी तक है 5 मेडल्स। लेकिन आपको ये बता दें दोस्तों कि भारत की अंक तालिका में जो अभी स्टैंडिंग है वो है 10वें स्थान पर। तो सफर अभी काफी लंबा पड़ा हुआ है, लेकिन उम्मीद ये करते हैं कि हमारे एथलीट्स एट द एंड ऑफ द डे अभिनव बहुत ही शानदार प्रदर्शन दे पाएंगे इस एशियन गेम्स 2026 के अंदर।
1: जी हाँ, सारी अभी मगर निगाहें हैं श्रीहरि नटराज पे, उनका कंपटीशन शुरू हो गया मेंस 50 मीटर बैक स्ट्रोक फाइनल पे। श्रीहरि नटराज पूरा अपना जोश दिखा रहे हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली श्रीहरि नटराज नहीं कोई भी मेडल जीत पाए। और ये लेटेस्ट अपडेट है, अब हम आकाशवाणी में वापस आएंगे 3:30 बजे। आप सुनते रहिए आकाशवाणी फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स फ्रॉम आईची नगोया एशियन गेम्स।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए श्रोताओं, करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने। लिखते हैं,
2: मन शांत हो तो हर कठिन परिस्थिति भी एक नई और महत्वपूर्ण सीख बन जाती है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू लिखते हैं,
3: सादर नमस्कार।

0: ये मेरा प्रशंसा पत्र है। उमंग कार्यक्रम का मैं नियमित श्रोता हूँ। इससे हमारा भरपूर मनोरंजन तो होता ही है, हमें सीख और प्रेरणा भी मिलती है। बेहतरीन प्रस्तुति के लिए पूरे टीम को हार्दिक बधाई और धन्यवाद।
1: भट्टीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मेहू।
0: और ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अब्बान अब्बासी।
1: रानी गांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्र रेखा साहू, शुभम और सेजल साहू।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आपके संदेशों के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो हमारा पहला प्रश्न था आपसे कि दक्षिण अमेरिका के उस फल का नाम बताइए जिसे मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था।
1: इसका उत्तर जान लेते हैं साथियों, कोकोवा या कोको फल का मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था।
0: और हमारा दूसरा प्रश्न था कि चिपको आंदोलन की शुरुआत मूल रूप से किस गांव से हुई थी।
1: तो श्रोताओं इसका उत्तर है, चिपको आंदोलन की शुरुआत मूल रूप से राजस्थान के खेजडली गाँव से हुई थी।
0: और फिर हमने आपसे पूछा था कि जापान की कोदामा परंपरा में विशेषकर पुराने पेड़ों को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, ऐसा क्यों?
1: उत्तर है साथियों, जापान की कोदामा परंपरा में विशेषकर पुराने पेड़ों को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है क्योंकि इन्हें जीवात्मा माना जाता है। ये ऐसे वृक्ष होते हैं जो जंगल के दूसरे पेड़ पौधों का भी पोषण करते हैं।
0: और हमारा अगला सवाल बड़ा मजेदार था। हमारा सवाल था श्रोताओं, यदि कोई स्वार्थवश जंगल में लकड़ी काटने जाए तो जंगल का रक्षक लेशी उनके साथ क्या करता है?
1: उसका उत्तर है साथियों, लेशी उन्हें जंगल में भटका देता है।
0: जी, और हमारा अंतिम प्रश्न था आपसे कि खासी समुदाय के बुजुर्गों और ग्राम प्रधानों का जवानों और बच्चों को जंगल के बारे में दिया जाने वाला मूल संदेश क्या है?
1: खासी समुदाय के बुजुर्गों और ग्राम प्रधानों का संदेश है, जंगल हमारा नहीं है, हम बस इसके रखवाले हैं।
0: तो श्रोताओ ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, राष्ट्रगान जन गण मन को संगीतबद्ध किसने किया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: राष्ट्रगान जन गण मन को संगीतबद्ध किसने किया था?
0: श्रोताओ आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भेज सकते हैं। हमारा निवेदन ये भी है कि इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को ताज़ा तरीन जानकारी के लिए जरूर फॉलो करें।
1: जी, और आपको बता दें कि अब NCERT की कक्षा 9 तक की नई पाठ्य पुस्तकें किसी भी सर्च इंजन द्वारा NCERT की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती हैं। टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF।
0: और यदि आप इन पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।
1: जी,
0: वहाँ आप हमारे शैक्षिक कार्यक्रम भी जब चाहें सुन सकते हैं। और अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, शीर्षक है दिस इज माई टाउन।
1: अंग्रेजी की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक में मुद्रित कविता को संगीत रूप में प्रस्तुत करते हुए ये कार्यक्रम नगर की बनावट, साफ सफाई और कूड़ा निपटान समेत स्वच्छ पर्यावरण बनाए रखने का संदेश देता है।

0: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देते हुए NCERT असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने के क्रम में कार्य कर रहा है। और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम का शीर्षक है जगमगाता गांव।
1: इस कार्यक्रम में संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन के जीवन का एक प्रेरक प्रसंग लिया गया है और विशेष रूप से संदेश दिया गया है कि हमें अपने विचारों को कर्म में भी प्रकट करना चाहिए, अन्यथा उनका कोई मूल्य नहीं है।
2: साथियों, आज हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो आपको जरूर प्रोत्साहित करेगी। ये घटना अमेरिका की है।
3: ये बात उन दिनों की है जब अमेरिका संयुक्त राज्य नहीं बना था। दरअसल ये कई देशों की कॉलोनी थी। उस जगह के मूल निवासी आदिवासी थे, जिन्हें रेड इंडियंस भी कहा जाता था। आगे चलकर जब सभी राज्यों का एकीकरण हुआ तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका बना। ये वही अमेरिका है जिसे इतालवी नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस ने खोजा था और इसे नई दुनिया का नाम दिया था।
2: कोलंबस निकले तो थे भारत को खोजने, लेकिन पहुंच गए अमेरिका। तो आइए मित्रों, इस जानकारी के साथ अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये 17वीं शताब्दी के आरंभ का काल था। उन दिनों आज की तरह आधुनिक सुविधाएं नहीं थी।
3: मोटरगाड़ी, टेलीफोन, चलचित्र, समाचार पत्र कुछ भी नहीं था। यातायात के साधन नहीं के बराबर थे और लोग आवागमन के लिए या तो पैदल चलते या पशुओं का इस्तेमाल करते थे।
2: बिजली भी नहीं थी, इसलिए रात को लोगों को यात्रा करने में बड़ी परेशानी होती थी। जो सड़कें थीं, वे भी खस्ता हाल थीं। बारिश के समय वहां बड़े बड़े गड्ढे बन जाया करते थे और उनकी मरम्मत करने वाले नहीं के बराबर थे। और तो और, अधिकांश सड़कें कच्ची ही थीं।
3: इन कारणों से वहां दुर्घटनाओं का होना आम बात थी। रात के अंधकार में यात्रा करने वाले मुसाफिर और मुख्य रूप से व्यापारी अक्सर दुर्घटनाओं का शिकार होते थे। हर रोज कोई न कोई ऐसी घटना होती ही रहती थी।
2: ज्यादातर व्यापारी ही इन दुर्घटनाओं का शिकार इसलिए होते थे क्योंकि उन्हें अपना सामान लेकर सुबह सुबह मंडियों में पहुंचना होता था और इसलिए उन्हें रात भर सफर करना पड़ता था।
3: अमेरिका के वर्जीनिया प्रांत में एक गांव था, नाम था पोप्स क्रीक। इसी गांव में एक बालक रहता था। उसके गांव में भी इस तरह की दुर्घटनाओं का होना आम बात थी। जब कोई भी उस गांव से रात को गुजरते हुए दुर्घटना का शिकार होता तो उस बालक को बहुत दुख होता।
2: लेकिन किया ही क्या जा सकता था, उसे कोई

0: समाधान दिखाई नहीं पड़ता था। उसने अपने गांव के बड़े लोगों से बात भी की, लेकिन सबने हंसकर टाल दिया। लोग उस बच्चे का मजाक भी उड़ाते थे। उसके पिताजी अक्सर अपने व्यवसाय के कारण बाहर ही रहते थे।
1: लेकिन वो बच्चा इस समस्या के समाधान के लिए लगातार सोचता रहता। एक दिन की बात है, उसने अपनी माँ से कहा,
2: माँ।
3: हाँ बेटा।
2: मुझे बहुत बुरा लगता है जब रोज हमारे घर के सामने दुर्घटना होती है। कोई ना कोई रोज हमारे घर के सामने गड्ढों में गिरता है।
3: हाँ बेटा, पर ये कोई नई बात तो है नहीं।
2: हाँ पर
3: देखो, ऐसी दुर्घटनाएं तो पूरे गांव में हो रही हैं और दूसरे गांव में भी होती हैं।
2: पर माँ हमारे
3: लेकिन बेटा, इसमें भला हम क्या कर सकते हैं? सड़कें खराब हैं और अंधकार भी तो है, तो दुर्घटनाएं तो होंगी ना बेटा।
2: जरा सोचो ना माँ, लोग इसी तरह दुर्घटनाओं का शिकार होते रहते हैं, क्या हम चुप्पी साधे बैठे रहेंगे?
3: अच्छा अच्छा ठीक है बेटा, अब तुम जाओ और अपनी पढ़ाई करो, मेरे पास बहुत काम है, मुझे जाने दो।
2: लेकिन माँ सुनो ना।
3: अरे बेटा मैंने कहा।
2: अरे सुनो, उफ माँ।
3: अरे बेटा मेरे पास बहुत काम है, मुझे जाने दो।
2: माँ कोई सुनता भी तो नहीं है, मुझे इस समस्या के हल के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, लेकिन क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं?
1: साथियों, उस बच्चे ने हार नहीं मानी और अपने पिता से भी बात की। उसने गांव के बड़ों से भी बात की, लेकिन कोई हल नहीं निकला।
0: वो बच्चा लगातार सोचता रहता कि क्या किया जा सकता है, लेकिन कोई उपाय नजर नहीं आ रहा था। एक दिन की बात है, शाम हो गई थी और रात्रि भोजन का समय हो गया था। सब डिनर करने बैठे थे।
3: लो बेटा। अरे क्या बात है बेटा, तुम तो कुछ खा ही नहीं रहे हो। बताओ बताओ क्या सोच रहे हो?
2: हाँ माँ, मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ। बेशक बहुत बड़ा समाधान तो नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हम कुछ तो कर ही सकते हैं।
3: कुछ कर सकते हैं? भाई क्या समाधान है? देखो, बड़े बड़ों से कुछ नहीं हुआ और तुम करोगे।
2: हाँ माँ। माँ कैसा रहेगा यदि हम अपने घर के बाहर एक लैंप रख दें या लालटेन टांग दें?
3: बेटा जॉर्ज, तुम कैसी बातें करते हो? लालटेन टांग दें, इससे क्या होगा भला?
2: माँ मुझे दे दीजिए ना एक लालटेन।
3: बेटा
2: मैं जल्दी लालटेन को घर के बाहर लटका दूंगा।
3: अरे इस छोटी सी लालटेन से क्या होगा? क्या दुर्घटनाएं रुक जाएंगी? सारा गांव इस बात पर हंसी उड़ाएगा हमारी।
2: हंसने दो ना माँ, हम लोगों को यूं ही चोट खाने के लिए नहीं छोड़ सकते। मैं मानता हूँ कि सारी दुर्घटनाएं नहीं रुकेंगी, लेकिन
3: लेकिन क्या बेटा?
2: कम से कम हमारे घर के सामने तो दुर्घटना होनी कम हो जाएगी ना। लालटेन से लोगों को रास्ता दिख जाएगा और वे बच जाएंगे। लाओ मुझे एक लालटेन दे दो। माँ दे दो ना, माँ दे दो।
3: अरे बेटा सुनो तो।
2: माँ एक लालटेन दे दो।
3: देखो बेटा, इससे कुछ नहीं होगा। और तुम लालटेन उठाकर, अरे तुम,
2: अरे माँ लालटेन दे दो।
3: अरे लालटेन लेके कहाँ जा रहे हो? अरे बेटा रुको तो सही। ओहो सुनो तो। देखो ये बच्चा मानता ही नहीं है। ठीक है जैसा तुम सोचो।
2: एक दो दिन के लिए ऐसा करने में हर्जी क्या है? करके देखता हूँ। कहाँ रखूँ, कौन सी जगह, यही ठीक रहेगा। कुछ नहीं करने से कुछ करना तो अच्छा है।
1: साथियों, उस बालक का नाम था जॉर्ज। उसने जलती हुई लालटेन उठाई और घर के बाहर लटका दी। वो देखना चाहता था कि इसका क्या असर होता है। रात भर वो जागता रहा।
0: सुखद आश्चर्य, व्यापारियों और यात्रियों का झुंड वहां से गुजरता रहा, लेकिन उस रात उसके घर के आगे कोई दुर्घटना नहीं हुई।
1: सुबह वो बच्चा भागा भागा माँ के पास पहुंचा।
2: माँ माँ माँ।
3: अरे अरे बड़ी खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है?
2: देखा आपने रात को लालटेन टांगने का असर? मैं तो सारी रात जागता रहा।
3: क्या क्या कह रहे हो तुम? क्या वहाँ पे एक भी दुर्घटना नहीं हुई?
2: नहीं माँ, एक भी नहीं।
3: अच्छा।

0: अरे ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा कि हमारे घर के सामने किसी को चोट नहीं लगी। तुमने बहुत अच्छा काम किया बेटा।
1: मैं कहता था ना माँ, कुछ नहीं करने से कुछ करना अच्छा है। अब तो मैं गांव के लोगों को भी ये बात बताऊंगा।
0: हाँ, ये जरूर करना, तुम सबको बताना।
1: हाँ माँ,
0: बहुत अच्छा काम किया बेटा, मैं तो विश्वास ही नहीं करती थी। बहुत अच्छा।
2: तो साथियों, जॉर्ज को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसकी माँ को भी बात समझ में आने लगी थी। उन्हें लगा कि यदि हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो इतना तो कर ही सकते हैं कि कम से कम हम अपने घर के बाहर होने वाली दुर्घटनाओं को तो कम कर ही सकते हैं। कुछ लोगों ने उनकी हंसी जरूर उड़ाई, लेकिन उन्होंने अब रोज रात को लालटेन टांगना शुरू कर दिया।
3: उन्हें बहुत अच्छा लगा जब कई राहगीरों ने रात को उनके घर का दरवाजा खटखटाया और इस बात के लिए उन्हें धन्यवाद दिया।
2: धीरे धीरे ये चर्चा सारे गांव में होने लगी और लगभग सभी लोगों ने अपने अपने घर के सामने लैंप या लालटेन रखना शुरू कर दिया और परिणाम ये हुआ कि दुर्घटनाएं होनी बिल्कुल बंद हो गईं।
3: राहगीर जब दूर से आते तो उन्हें उस गांव को जगमगाता देखकर बड़ी प्रसन्नता होती। अब तो दूर दूर तक इस गाँव की चर्चा होने लगी और लोगों ने इस गांव का नाम रखा द विलेज ऑफ लाइट्स।
2: विलेज ऑफ लाइट्स यानी जगमगाता गांव। साथियों, देखा आपने कैसे एक बालक की सोच और इच्छा शक्ति ने सारी परिस्थिति बदल दी। धीरे धीरे आसपास के गांव के लोगों ने भी ऐसा ही करना शुरू किया और वो क्षेत्र दुर्घटना मुक्त हो गया। इसी बात से प्रेरणा लेकर बाद में सड़कों के किनारे तेल के लैंप पोस्ट लगने शुरू हो गए।
3: हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि यदि कोई कुछ नहीं कर रहा है तो हम भी क्यों करें। कोई करे या ना करे, यदि हम कुछ अच्छा कर सकते हैं तो हमें जरूर करना चाहिए, और वो भी पूरी लगन से, जैसा कि उस बालक ने किया।
2: साथियों, वो बालक जॉर्ज कोई और नहीं, उसका नाम था जॉर्ज वॉशिंगटन, जो आगे चलकर अमेरिका के संस्थापक और प्रथम राष्ट्रपति बने।
3: जी हाँ साथियों, आप ये ना देखें कि कोई क्या कर रहा है या क्या कर सकता है, आप ये देखें कि आप क्या कर सकते हैं। यदि आप परिवर्तन चाहते हैं तो सबसे पहले वो परिवर्तन आप स्वयं बनिए।
4: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम।

0: जादुई पिटारा, है ना मजेदार साथियों? जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
2: और अब सुनते हैं कार्यक्रम
0: भाई मट्टू और घड़ी।
3: एक दिन का जिक्र है, भाई मट्टू खेलते खेलते बावर्ची खाने में घुस गए। वहां दीवार पर घड़ी लगी थी, बस देखते ही उछल पड़े, सीधे चट्टू के पास भागे। इतने तेज कि बस कुछ पूछो मत। चट्टू के पास पहुंचे तो सांस फूला हुआ था, मुंह से आवाज नहीं निकलती थी। मट्टू बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाल कर बोले,
4: अरे चट्टू, वो दीवार पर टंगी है बावर्ची खाने में, और भाई बहुत ही खूबसूरत है।
5: आखिर क्या चीज?
4: घड़ी। घड़ी और क्या, और इसमें कुछ लटक भी तो रहा है, जाने क्या है, इधर आता है उधर जाता है, बस हिलता रहता है और ऐसे बोलता है जैसे टिक टिक टिक टिक। सुनो सुनो, आ रही आवाज।
3: चट्टू भाई ने थोड़ी देर आवाज की तरफ कान लगाए और बोले,
5: हाँ भैया, आ तो रही है।
3: इतना कहकर वो भी बावर्ची खाने की तरफ बहुत तेजी से भागे कि जरा एक नजर देख लें। वहां पहुंचकर बोले,
5: अरे भैया, ये तो पेंडुलम है। पेंडुलम, वही जिसे मास्टर साहब उस दिन रक्कास कह रहे थे। आहा भाई, ये तो बड़ा अच्छा झूला है।
3: चट्टू भाई झट से उस पर कूद कर चढ़ गए। अब मट्टू भाई को कहां ताप थी, उन्होंने भी एक छलांग लगाई और झूले पर सवार हो गए। चट्टू भाई बोले,
5: भैया टिल्लू, खिल्लू और जग्गू मग्गू को भी बुला लाएं।
3: मट्टू बोले,
4: हाँ हाँ जरूर।
3: दोनों उतरे और थोड़ी देर में अपने साथ फौज की फौज ले आए।
4: देखो, ये है वो झूला, मगर अब सूरत क्या हो। अच्छा, यूं करें कि दो दो करके बारी बारी झूलें। पहले हम झूलेंगे, हमारा हक पहला है, हमें ने तो इसका पता लगाया है।
3: मगर वो चारों पांचों अकड़ने लगे।
5: वाह साहब वाह, पहले हम झूलेंगे, तुम अपनी बारी ले चुके और जाने कितना झूल चुके हो।
3: अभी ये बहस हो रही थी कि घड़ी की सुई ठीक 12 के हिंसे पर आ गई। अचानक एक खटके के साथ छोटा दरवाजा खुला, उसमें से एक खूबसूरत सी चिड़िया बाहर आई और बहुत गुस्से से बोली,
4: हाय, ये क्या शरारत, तुमने यहाँ आने की कैसे हिम्मत की, ये मेरा घर है, भाग जाओ।
3: चूहे इस आवाज से ऐसे सहमे कि जिसका जिधर मुंह उठा गिरता पड़ता बुरी तरह भागा।
2: पढ़िए और समझिए।
3: कान लगाना,
2: ध्यान देना।
3: रक्कास।

0: नाचने वाला
1: ताब
0: ताकत बर्दाश्त
1: हिंसा
0: नंबर अदद इन सवालों के जवाब दीजिए सवाल नंबर एक
1: भाई मट्टू खेलते खेलते कहां पहुंचे
0: सवाल नंबर दो
1: घड़ी की आवाज कैसी थी
0: सवाल नंबर तीन
1: घड़ी के किस हिस्से को मट्टू ने झूला बनाया था
0: सवाल नंबर चार
1: चट्टू टिल्लू खिल्लू और मट्टू डर कर क्यों भागे
2: इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है तो उमंग की तकनीकी टीम यानी जगबंधु चेतना अर्शद कुसुमलता और वीरेंद्र के साथ मुझे यानी विमलेश को आज्ञा दीजिए नमस्कार
3: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।

0: செய்தி சுருக்கம் நிறைவு பெற்றது.
1: இன்னும் சில நொடிகளில் ஜப்பானில் நடைபெற்ற 20வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் 2026 குறித்த தினசரி கள நிலவரம் கேட்கலாம்.
2: स्वागत है आपका अपडेट्स के लिए फॉर एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया. मेरा नाम है अभिनव पुंछी, मेरे साथ है साक्षी मनवाल. और खुशखबरी आई है वुशु के अरीना, क्योंकि इंडिया की रोशिबिना देवी ने जीत हासिल करी है. राउंड ऑफ 16 मैच में उन्होंने मोचिका खातून को हराया विन बाय पॉइंट डिफरेंस. और याद दिलाए आप सबको कि रोशिबिना देवी ने सिल्वर मेडल जीता था हैंगझो एशियन गेम्स 2022 में, और 2018 जकार्ता में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था. बस एक जीत की और जरूरत है रोशिबिना देवी को, और इंडिया को एक और ब्रॉन्ज मेडल गारंटीड है. और मेरे साथ है साक्षी.
3: जी अभिनव, थैंक यू सो मच. एंड गिवन द फैक्ट दैट आपने हमारे श्रोताओं को अभी खुशखबरी दी है, तो ये डेफिनेटली अ रीजन टू स्माइल है, बिकॉज अपने श्रोताओं को मैं याद दिलाना चाहूंगी कि आज सुबह की शुरुआत में नायमन वांगशू फिनिश्ड एट द 15th स्पॉट इन द एशियन गेम्स वुमेन्स चैंगकुआन फाइनल विद 9.573 पॉइंट्स इन अ 16 स्ट्रॉन्ग फील्ड. वहीं हांगकांग की हुई यू लिडिया शैम ने गोल्ड अपने नाम किया था 9.713 पॉइंट्स के साथ. तो जहां वुशु ने आज सुबह उतनी स्ट्रॉन्ग स्टार्ट रिप्रेजेंटेशन के तौर पर नहीं देखी भारत के एंगल से, लेकिन अब वहां पर हम देख रहे हैं स्ट्रॉन्ग कमबैक. और उसी में आर्यन भी अब आमने सामने आने वाले हैं शहजादा सफी के साथ इन द मेंस 56 kg राउंड ऑफ 16 एट 3:50 PM टुडे, यानी अगले 20 मिनट में आप ये मुकाबला भी देख सकेंगे. अभिनव
2: जी हाँ, और बात करें एक बड़ी राइवलरी, द आर्च राइवल्स इंडिया एंड पाकिस्तान आर क्लैशिंग राइट नाउ इन द टेबल टेनिस मेंस टीम इवेंट. इंडिया और पाकिस्तान का ये ग्रुप एफ का मुकाबला बस शुरू ही होने वाला है. हरमीत देसाई स्टार्ट ऑफ कर रहे हैं प्रोसीडिंग्स मोहम्मद खान के अगेंस्ट. इंडिया की टीम में सत्या गणेशेकरन, मानव ठक्कर, मनुष्या और पायस जैन है. याद दिलाए इंडिया ने इंडोनेशिया को तो 3-0 हराया, मगर शॉक हुआ जब इंडिया ईरान से 3-0 हारी. और आज इंडिया को पाकिस्तान को हराने की जरूरत है अगले फेज में जाने की. तो क्या इंडियन टीम वो कर पाएगी जो इंडियन विमेन्स टीम कर चुकी है, जिन्होंने पाकिस्तान को अर्लियर इन द डे हराया था.
3: जी उम्मीद करते हैं कि ऐसा हो जाए आज, बिकॉज अगर ऐसा होता है तो हमारे चांसेस ऑफ स्टेइंग अलाइव इन द एशियन गेम्स 2026 आल्सो स्टे अलाइव. लेकिन आप स्विंग की ओर भी एक रुख कर लेते हैं हमारे प्यारे दर्शक श्रोताओं, और आपको बताती हूँ कि इट्स नॉट बीन अ वेरी गुड डे फॉर आर इंडियन स्विमर्स, बिकॉज भारत की तरफ से श्रीहरि नटराज ने 10th स्पॉट पर फिनिश किया इन द मेन्स 50 m बैक स्ट्रोक फाइनल एट द एशियन गेम्स 2026, क्लॉकिंग 25.52 सेकेंड्स इन द 10th स्विमर मेडल रेस. और दूसरी तरफ ये भी बता दो आप सबको कि बाकी भी जो भारतीय खिलाड़ी थे उनका तो आज इससे भी ज्यादा निराशाजनक प्रदर्शन रहा, चाहे हम बात करें ऋषभ दास, आकाश माने, हीर जितेश शाह या फिर धानुष सुरेश की, या फिर मेंस के जो 4x200 m फ्रीस्टाइल रिले का मुकाबला भी जो होता है, हीट जो होता है, उसमें भी भारतीय स्विमिंग टीम साजन प्रकाश, अनीश सुनील, कुमार गावड़ा, वेदांत माधवन और दक्षिण शशि कुमार, ये सब क्वालिफाई करने से, फाइनल्स में क्वालिफाई करने से रह गए. तो ओवरऑल नॉट एट ऑल अ गुड डे फॉर इंडियन स्विमर्स ओवर देयर. अभिनव
2: जी हाँ, स्विमिंग में तो प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, मगर कबड्डी में तो इंडिया ने धमाका मचा दिया, क्योंकि जापान के खिलाफ इंडिया ने जीत हासिल करी 49-24. जापान की स्टार्ट बहुत अच्छी थी, मगर हमारी इंडियन टीम जो डिफेंडिंग चैंपियंस है, गोल्ड मेडलिस्ट है, उनके आगे तो कोई बड़ा नहीं. इंडिया ने एक फैंटास्टिक ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिखाई, 49-24 से जीत हासिल करी. और अब होने वाला है मुकाबला हमारी विमेन्स टीम का, क्योंकि एट 4:15 इंडिया वर्सेस बांग्लादेश विमेन्स ग्रुप ए का एक धमाकेदार इंकाउंटर होने वाला है साक्षी.
3: यस इंडीड, उसके ऊपर सबकी नजरें रहेंगी. और वो आज इंडिया के एंगल से भी आखिरी मुकाबला होगा भारतीय रिप्रेजेंटेशन का एशियन गेम 2026 के अंदर. लेकिन अगर थोड़ा सा आज पीछे जाए और बात करें कि आज ऐसे कौन से और पल आए जहां पर हम सबके चेहरों पर थोड़ी सी हंसी आ सकी, वो था बैडमिंटन की दुनिया से, जहां पर हमारे इंडियन शटलर्स लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और किदांबी श्रीकांत ने भारत को जीत हासिल कराई बांग्लादेश को 3-0 से हरा कर. और इसके साथ ही वो क्वार्टर फाइनल्स में भी प्रवेश कर गए, जहां पर अब उनका मुकाबला होगा जापान के साथ, जो कि बिल्कुल भी आसान मुकाबला नहीं होने वाला है अभिनव भारतीयों के लिए.
2: जी हां, और हमारा होने वाला है बहुत

0: दे बड़े मुकाबले, आप स्टे ट्यून रहिए, एशियन गेम्स की कवरेज सिर्फ आकाशवाणी पे अपडेट के साथ हम वापस आएंगे 4:30 पे। इंडिया भी मेडल टैली पे 12th पोजीशन में, होपफुली ये टैली बढ़ते रहे।
1: होपफुली लेट्स होप फॉर द बेस्ट ऑफ ईयर, बट एट द एंड वी कैन आल्सो से दैट इंडिया एंजॉयड अ सक्सेसफुल डे एट द एशियन गेम्स टुडे, हैविंग सिक्योर्ड अ टोटल ऑफ 6 मेडल्स सो फार। शूटिंग प्रोवाइडेड दो 3 ऑफ दोस मेडल्स, ऑफ कोर्स वेयर वी आर टॉकिंग ऑफ सिल्वर वी हैड 4 मेडल्स, 4 silvers and 1 bronze, but overall a good day so far for the Indians.

0: Hello and a very warm welcome to the live coverage of the ongoing Asian Games 2026 that we are bringing to you every hour on Akashwani. Dosto, main hu Sakshi Manwal aur mere saath yahan par maujood hai mere dear friend and of course co-host for the day Abhinav Punchi. And very quickly now moving on, sabse pehla sport jisko hum aaj cover karne wale hain, aapko batane wale hain is waqt ki pichle 1 ghante mein kya hua usme tha, wo hai wushu. More good news coming in for India in wushu. Aryan defeated Afghanistan's Shehzada Safi 2-0 in the men's 56 kg round of 16 to book his place in the quarterfinals. जी हाँ, quarterfinals में हम प्रवेश कर चुके हैं. वहीं कुछ पल पहले ही भारत की रोशिबेना देवी had also advanced to the women's 60 kg quarterfinals, beating Bangladesh most खतून by win by the point difference. यानी इसका मतलब ये हुआ अभिनव कि वुशु के quarterfinals में भारत ने अपनी जगह बना लिए, चाहे वो महिलाओं का हो चाहे वो हमारे आदमियों का हो, और वो quarterfinals होने वाले हैं कल.
1: एग्जैक्टली राइट साक्षी, और सबसे बड़ी बात यह है कि वुशु में अगर आप सेमीफाइनल्स में प्रवेश करते हैं तो गारंटीड ब्रॉन्ज है. तो बस एक जीत से दूर हैं हम दो ब्रॉन्ज मेडल्स गारंटी करने के लिए, बट हमारा तो मिशन गोल्ड का है. और इसलिए आज हमारी टेबल टेनिस की मेंस टीम ने आज ट्राइबल्स पाकिस्तान को 3-0 हराया. शानदार प्रदर्शन हमारी मेंस टीम का. याद दिलाएं, मेंस टेबल टेनिस टीम प्रेशर में थी क्योंकि ईरान से वो हारे थे 3-0. तो अगर क्वार्टर फाइनल्स में प्रवेश करना था तो आज पाकिस्तान को हराना बहुत ही महत्वपूर्ण था. तो हरमीत देसाई ने शुरुआत करी, मोहम्मद खान को हराया 11-4, 11-3, 11-5. फिर सत्यन गणेशेखर ने हराया अब्बास खान को 11-1, 11-8, 11-9. और प्रयास जैन ने मोहम्मद खान को हराया 11-2, 11-5, 11-7. इस जीत के साथ अब इंडियन मेंस टेबल टेनिस टीम जाती है क्वार्टर फाइनल्स.
0: जी, और कबड्डी की ओर भी अपरुख कर लेते हैं. महिला कबड्डी का मुकाबला आज होने वाला है. वैसे तो इसको शाम को 4:15 बजे शुरू होना था, लेकिन कुछ ही क्षणों में अब ये मुकाबला शुरू होता हुआ आप लोग देख सकेंगे. ये मुकाबला होगा भारत और बांग्लादेश की महिला कबड्डी के बीच में, जिसमें आपको ये भी बता दें कि भारतीय महिला कबड्डी टीम जो थी पिछले मुकाबले में ईरान से बुरी तरह से हारी थी. जी हाँ, 3-0 से ईरान ने भारत को हराया था. इसलिए आज भारत के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनके मनोबल के लिए, उनके आत्मविश्वास के लिए वो इस मुकाबले को जीतें और कॉन्फिडेंटली और कमांडिंग तरीके से जीतें. आपको ये भी बता दें कि भारत का जो ग्रुप है उसके अंदर भारत है, ईरान है, जापान है, बांग्लादेश है. ईरान से हम हार चुके हैं, अभी बांग्लादेश के साथ अभिनव मुकाबला है. और अगर आज भी नहीं जीते तो करो या मरो वाली कहानी है, उसके बाद जापान के साथ, और रास्ता मुश्किल नहीं होता.

0: सफर और कठिन ही हो जाएगा भारतीय महिलाओं के लिए।
1: जी हाँ, प्रेशर इज ऑन द इंडियन वेमेन, मगर जैसे हमारा इंडियन कंटिजेंट एशियन गेम्स में दिखा रहा है आईची नगोया में कि इंस्पायर कर रहा है एक दूसरे को, क्योंकि आज इंडियन मेंस कबड्डी टीम ने अपना जो इंकाउंटर था जापान के खिलाफ जीता 49-24 से। शुरुआत थोड़ी स्लो थी बट उसके बाद क्या पेस पकड़ी और शानदार तालमेल था हमारे अटैकर्स और डिफेंडर्स का, और ऑलराउंड परफॉर्मेंस के बाद हमारी टीम ने जीते 49-24। और आज बस ये अच्छी न्यूज नहीं थी साक्षी, मेडल्स की भी तो आज बरसात हुई है शूटिंग से।
0: ऑफ कोर्स शूटिंग से आज मेडल्स की बरसात हुई है, बिकॉज आपको बता दें कि शूटिंग में आज हिमांशु ढिल्लो हमारे लिए सिल्वर लेकर आए, वहीं रुद्राक्ष पाटिल हमारे लिए ब्रॉन्ज लेकर आए मेंस 10 मीटर एयर राइफल के फाइनल्स में। और क्योंकि हम शूटिंग की बात कर रहे हैं तो अभी तक अगर मेडल तालिका की बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा मेडल्स जो किसी गेम में आए हैं वो है शूटिंग के अंदर ही। जी हाँ, 4 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल की वजह से भारत की अभी जो मेडल टैली है उसमें कुल मिलाकर 6 मेडल्स हैं, जिसमें से 5 तो शूटिंग में आए, और छठा मेडल जो आया है वो आया है सुचिका तारियाल की वजह से। जी हाँ, इन मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स दिस गर्ल वेंट ऑन टू ब्रिंग लॉरल्स फॉर इंडिया बाय विनिंग द ब्रॉन्ज, एंड डिस्पाइट द फैक्ट दैट अंत में एक इमोशनल मोमेंट उसके लिए हो गया था, उनके लिए हो गया था बिकॉज ऑफ हाउ दैट मेडल वॉज ग्रांटेड और द डिसीजन वॉज मेड, येट there is no taking away the fact that she made India stand tall with pride, stand tall with of course confidence and happiness, and made every Indian also happy because MMA ke andar unhone Bharat ko bronze medal dilaya. To dosto, iske saath aapko bata dein ki India's medal tally receives a strong boost across multiple disciplines with the athletes delivering notable performances throughout the day and setting the tone for the rest of the games. Aur yahan se up क्विकली आपको बताते थे भारत की स्टैंडिंग है 12वीं स्थान पर, जिसमें है 6 मेडल्स, ऑफ कोर्स 4 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज, होपिंग दैट इंडिया टेंड्स टू परफॉर्म बेटर इन द कमिंग डेज। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन राइट नाउ, एक घंटे बाद दोबारा आपसे करेंगे मुलाकात, फिलहाल के लिए बाय बाय।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी। मैं हूँ साक्षी मांडवाल और मेरे साथ है अभिनव पुंशी एंड वी ब्रिंगिंग यू द लाइव अपडेट्स ऑफ द ऑनगोइंग एशियन गेम्स 2026। घड़ी में इस वक्त बच रहे हैं दोस्तों 5:30 और अभी की सबसे तरोताजा खबर ये है कि कबड्डी में भारतीय महिलाओं का मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ शुरू हो चुका है। ग्रुप ए का यह मुकाबला जिसमें डिफेंडिंग चैंपियंस भारतीय टीम ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टार्ट करी है अगेंस्ट द ओपोनेंट्स बांग्लादेश। बाय द एंड ऑफ द हाफ टाइम इंडियन वुमेन वर लीडिंग अगेंस्ट बांग्लादेश 21-10 21-10 से भारतीय महिलाओं को बढ़ोतरी मिली हुई थी। और हाफ टाइम के बाद भी अगर हम बात करें तो अभी भी भारत का जो स्कोर है वो है 39-21। यानी बांग्लादेश के खिलाफ ये मुकाबला बहुत ही एक तरफा एक तरीके से निकलकर बाहर आ रहा है। सो फार बांग्लादेश ने फाइट तो अच्छी दी है भारतीय खिलाड़ियों को, लेकिन भारतीय महिलाओं के करीब कबड्डी की इस मैच में वो आ नहीं पाए। और एक छोटा सा करेक्शन भी करना चाहूंगी दोस्तों आप सभी के लिए कि जो कबड्डी के ये मैचेस हैं उसमें भारत के साथ जो उनके ग्रुप ए के अंदर इस समय पेयर टुगेदर हैं वो है ईरान, बांग्लादेश और जापान। आज भारत का पहला मुकाबला है बांग्लादेश के खिलाफ, इसके बाद भारत का मुकाबला होगा ईरान के खिलाफ जो कि है बुधवार यानी 23 सितंबर को तोकाई सिटीजन जिम्नाजियम में, और फाइनली उनका मुकाबला है जापान के खिलाफ 24 सितंबर को तोकाई सिटीजन जिम्नाजियम में ही। मेरे साथ है अभिनव। अभिनव, गुड स्टार्ट फॉर द इंडियन वुमेन्स कबड्डी टीम।
2: जी हाँ साक्षी, स्टनिंग स्टार्ट बाय द इंडियन वुमेन्स कबड्डी टीम। और अगर मेंस कबड्डी टीम की भी बात करें तो दे आल्सो हैड अ वंडरफुल स्टार्ट अगेंस्ट द होस्ट जापान। इंडिया ने जापान को हराया 49-24 हाफ टाइम पे। इंडिया वाज लीडिंग 31-9। आशु मलिक और देवांग दलाल ने तो अपना कमाल दिखाया ही, और हमारे मेन कबड्डी प्लेयर्स मैच में ज्यादा एंट्री नहीं कर पाए, ज्यादा इंपैक्ट नहीं कर पाए, रेस्ट कर रहे थे। और होस्ट के साथ थोड़ा सा इंडिया ने टेक इट इजी करा एज अकॉर्डिंग टू द कैप्टन सुनील कुमार, मगर गुड स्टार्ट फॉर द इंडियन मेंस कबड्डी कंटिंजेंट। अब इंडिया और कोरिया का मुकाबला होने वाला है कल, जब हमारी मेंस टीम चाहेगी थोड़ा मोमेंटम फिर से गेन करें। याद दिलाए इंडियन मेंस भी है डिफेंडिंग चैंपियंस, तो क्या इस बारी रिपीट होने वाला है? एंड साक्षी, आई एम श्योर यू हैव अ वेरी गुड अपडेट फॉर अस फ्रॉम द विमेंस मैच, बिकॉज मुझे लग रहा है बस 20 सेकंड बाकी है और इंडिया कंफर्टेबली जीत रही है।
1: हाँ जी, इस मुकाबले में तो भारत की जीत तय ही है, निश्चित हो चुकी है ऑलमोस्ट, लेकिन वही कहते हैं ना, जब तक ये मुकाबला समाप्त ना हो तब तक समाप्त होता नहीं है। लेकिन अभी अगर विमेंस टेबल टेनिस मुकाबले की भी बात करें तो वहां पर भी दोस्तों भारत ने पाकिस्तान को 3-0 से आज हरा दिया। मैं बात कर रही हूँ विमेंस टेबल टेनिस टाइक मैच की, जो टीम मैच था इसमें श्रीजा अकुला ने भारत की टीम को जीत दिलाई आखिरी मुकाबले में, जहां उन्होंने फातिमा खान को 11-4, 11-4, 11-5 से हराया। एंड एज अ रिजल्ट इंडिया वाज एबल टू फिनिश एज ग्रुप एफ विनर्स एंड एडवांस टू द क्वार्टर फाइनल्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट योगदान जो इस मैच के अंदर रहा, या मैं कहूं इस मुकाबले में रहा, वो था सिंड्रेला दास का। इट वॉज अ डेब्यू इन एशियन गेम्स दिस ईयर एंड शी बीट कलसुम खान 11-6, 11-7, 11-5 इन अ कंफर्टेबल स्ट्रेट गेम्स विक्ट्री, जिसकी वजह से भारत को 2-0 से बढ़त मिल गई थी पाकिस्तान के ऊपर। और फाइनली कहते हैं ना कि द बेस्ट आइसिंग ऑन द केक वॉज सर्व्ड बाय श्रीजा अकुला, जिन्होंने 3-0 से भारत को पाकिस्तान के ऊपर जीत दिलवा दी।

0: महिला टेबल टेनिस की टीम टेबल टेनिस टाई के अंदर। अब भारत का सामना होगा थाईलैंड के साथ कल इन देयर लास्ट ग्रुप स्टेज इनकाउंटर। वैसे तो भारत क्वालिफाई कर गया है, लेकिन एज पर द प्रोटोकॉल और नियम के हिसाब से कल भारत थाईलैंड के साथ फेस टू फेस आने वाला अभिनव।
1: और जैसा हमने आपको प्रॉमिस करा था वो ब्रेकिंग न्यूज अब हम आपको दे सकते हैं। इंडिया ने अपना मैच बांग्लादेश के खिलाफ जीत लिया है 42-21, सो वेरी गुड डे फॉर द इंडियन कबड्डी टीम बोथ मेंस एंड वुमेन्स। एंड Sakshi was talking about the table tennis team or Indian men's table tennis team was also up against the arch rivals Pakistan. Aur yaad dilaye, Indian men's had to win this match kyunki Iran se haar unko mili thi. Toh Indian men's ne Pakistan ko haraya 3-0. Outstanding performance by Harmeet Desai, Satyan Ganeshekaran and Prayas Jain. And is win ke saath India abhi on the verge of quarterfinals. Abhi quarterfinals ki jagah pakki nahi hui hai. And of course, latest Asian Games ki sari updates ke saath आप हमारे साथ जुड़िए ऑन आकाशवाणी। हम एक घंटे में 6:30 में आपको फिर सारी अपडेट्स बताएंगे आईची नगोया से, सो स्टे ट्यून्ड।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

0: को आज जीतना ही था, ये पाकिस्तान को हराना ही था, क्योंकि पाकिस्तान को 3-0 आज हराने के बाद इंडियन मेंस टीम ने प्रवेश करा है प्री क्वार्टर फाइनल्स में। अभी इंडियन मेंस टीम के प्री क्वार्टर फाइनल के ओपोनेंट हम आपको अपडेट में बताएंगे अपने नेक्स्ट अपडेट आकाशवाणी में, मगर इंडियन विमेंस टीम ने भी साक्षी कमाल दिखाया आज।
1: ऑफ कोर्स यस, क्योंकि अगर महिलाओं के टेबल टेनिस के मुकाबले की बात करें तो वहां पर भारतीय महिलाओं ने आज पाकिस्तान को 3-0 से शिकस्त दी, जिसमें श्रीजा अकुला ने आज फातिमा खान को 11-4, 11-4, 11-5 से स्ट्रेट गेम्स में हरा कर भारत को ग्रुप एफ के विनर्स के तौर पर आज उनका ये सफर यहाँ पर लाके खड़ा किया और उसके साथ ही साथ भारत को आगे भी प्री क्वार्टर फाइनल्स में एडवांस करा दिया। एक बहुत अहम नाम जिसको लेना हमें नहीं भूलना चाहिए वो है सिंड्रेला दास, जिनका ये एशियन गेम्स का डेब्यू था या कहना चाहिए है इस वर्ष, और उन्होंने कलसूम खान को 11-6, 11-7, 11-5 से हरा कर भारत को एक बहुत ही कॉन्फिडेंट, कमांडिंग और श्योर शॉट पोजीशन में लाकर खड़ा कर दिया था, क्योंकि उन्होंने भारत को 2-0 की बढ़त दिलवा दी थी पाकिस्तान के ऊपर। और इसके बाद सिर्फ श्रीजा कुला को एक नेम से गेम खेलना था, जहां पर उन्होंने फिर से फातिमा खान, जो कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही थी, उनको हराया और 3-0 से भारत ने पाकिस्तान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल्स में अपनी जगह बना ली, जहां उनका अब सामना होगा थाईलैंड से कल। और अपने दोस्तों आपको ये भी बता दें हम कि अगर भारत कल थाईलैंड को हरा देता है तो अभिनव भारत का अगला मुकाबला होगा नॉर्थ कोरिया के साथ, और वो बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है, ये तो हम सबको पता है।
0: जी हाँ, इट विल बी अ टफ कॉन्टेस्ट, मगर क्वार्टर फाइनल के पहले इंडिया को थाईलैंड को हराना ही पड़ेगा वो प्री क्वार्टर फाइनल मैच में। और हमें पता है दैट ऑल आर लिसनर्स वाज बी थिंकिंग वेयर इज दिस गोल्ड मेडल कमिंग फ्रॉम। अभी तक इंडिया के पास मेडल्स टैली में इंडिया 12th पोजीशन में, शूटिंग से सिल्वर मेडल आए हैं, ब्रॉन्ज मेडल्स भी आए हैं हमारे पास, मगर गोल्ड कल आ सकता है। जी हाँ, गोल्ड का अकाउंट हमारा खुल सकता है, क्योंकि इंडिया श्रीलंका 10:30 AM क्रिकेट का मैच होने वाला है, और ये रिपीट है एशिया कप फाइनल का, जहाँ हमें याद है इंडिया ने वो एशिया कप ट्रॉफी जीती थी, श्रीलंका से रिवेंज लिया था। और साक्षी, आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू गोल्ड टुमारो?
1: एनी डे एनी टाइम। गोल्ड की अगर हम बात करते हैं, वो भी हमारे भारतीय खिलाड़ी, चाहे वो हमारे एथलीट्स हो या प्लेयर्स हो, बट इट्स अ मोमेंट ऑफ प्राइड, एंड एनी पर्सन हु लव्स क्रिकेट, हु लव्स स्पोर्ट्स इन जनरल, विल ऑलवेज वॉन्ट द बेस्ट फॉर देयर प्लेयर्स हु वर्क डे एंड नाइट सो हार्ड टू गेट आर कंट्री दैट कवेटेड गोल्ड मेडल। और इसके साथ ही दोस्तों, इस वक्त तो फिलहाल अपडेट्स का सिलसिला यहाँ पर आकर समाप्त होता है, लेकिन हम वापस से आपसे एक बार फिर से शाम को 7:30 बजे जुड़े

0: ये जहां पर आज के दिन का आखिरी अपडेट हम आपके लिए लेकर आएंगे और बताएंगे कि कैसा रहा ओवरऑल भारत के लिए आज का दिन एशियन गेम्स में।
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
2: अभी आप एशियन गेम्स 2026 की अपडेट सुन रहे थे।

0: और सबसे पहले सिल्वर आया हमारे इंडियन कंटिंजेंट के लिए 10 मैन राइफल मेंस टीम इवेंट में, हिमांशु ढिल्लन, रुद्रांश पाटिल और पार्थ माने की वजह से इंडिया को मिला सिल्वर। और उसके बाद हिमांशु ढिल्लन विद अ सिल्वर एंड पार्थ एंड रुद्रांश पाटिल विद अ ब्रॉन्ज इन द मेंस इंडिविजुअल 10 मीटर एयर राइफल। याद दिलाएं, हिमांशु ढिल्लन का ये डेब्यू एशियन गेम्स है और क्या धमाकेदार डेब्यू हुआ है हिमांशु ढिल्लन का। डबल पोडियम अभी तक इंडिया का सबसे पहला डबल पोडियम है 2026 एशियन गेम्स का, होपफुली मेनी मोर टू कम। और हमने बोला था 4 मेडल आए हैं, जी हाँ, क्योंकि एक मेडल भी आया है थैंक्स टू एमएमए फाइटर सुचिका तारियाल। शी फॉट अ हार्ड मैच इन हर बाउट अगेंस्ट हर सिंगापुर ओपोनेंट और एंड शी वाज वेरी इमोशनल आफ्टर द एंड ऑफ द मैच, मगर उसके बाद उस हार के बाद सुचिका गॉट अ ब्रॉन्ज और फिर हम अब 12th पोजिशन में है इन द मेडल्स टैली। एंड इंडिया होपफुली, अभी बहुत बड़े बड़े स्पोर्ट्स बाकी हैं, बड़े एथलीट्स बाकी हैं इंडियन कंटिंजेंट के, एंड होपफुली मोर मेडल्स आर अपकमिंग। और आपको बताएं थोड़ा सा प्रीव्यू कि कल क्या होने वाला है एट द एशियन गेम्स। जी हाँ, आई होप यू हैव एन अर्ली स्टार्ट, क्योंकि सुबह 6 बजे बैडमिंटन होगा, इंडिया वर्सेस जापान विमेन्स टीम्स क्वार्टर फाइनल, बहुत क्रुशियल मैच है इंडियन टीम के लिए एंड सेमीफाइनल में प्रवेश करने के लिए। 6:15 बजे शूटिंग में जो हमारी अभी तक सिल्वर मेडलिस्ट हो चुकी हैं एलेवेनील वारावीरियन, उनके साथ होंगे पार्थ माने, 10 मीटर्स एयर राइफल मिक्स टीम क्वालिफिकेशन एंड मेडल इवेंट होगा वो 6:15 बजे। 6:30 AM इट्स वुशु टाइम एंड वुशु में लैंगलिन टॉमी देवी हमारे विमेन्स नैनक्वान फाइनल में है। याद दिलाएं आपको, नैनक्वान फाइनल में 10 कंपेटिटर्स होते हैं, सो होपफुली इंडिया कम्स अवे विद अ मेडल इन दैट इवेंट। 6:30 बजे हमारी शूटिंग के स्कीट के कंपटीशन में मेंस एंड विमेन्स टीम इंडिविजुअल क्वालिफिकेशन एंड टीम इवेंट के डे 2 में, याद दिलाएं 3 डेज होते हैं स्कीट कंपटीशन में। विमेन्स टीम राइट नाउ आर प्लेस 3rd एंड मेंस टीम आर राइट नाउ फेस प्लेस 6th। 7:15 बजे इट्स कबड्डी टाइम, जी हाँ, इंडिया वर्सेस साउथ कोरिया। आज तो इंडियन मैन ने होस्ट जापान को हराया, क्या साउथ कोरिया को भी हरा पाएंगे। 7:35 चेतन भट्ट हमारे मेंस क्यूमाइट कराटे के मैच में दिखेंगे, 84 kg सेमीफाइनल, क्या चेतन फाइनल तक प्रवेश कर पाएंगे। उसके बाद एक ब्लॉकबस्टर प्री क्वार्टर फाइनल टेबल टेनिस मुकाबला है इंडियन मेंस टीम, इंडिया वर्सेस साउथ कोरिया, क्या इंडिया साउथ कोरिया को अपसेट कर सकता है और जीत सकता है वो क्रूशियल टेबल टेनिस का ये प्री क्वार्टर फाइनल मैच। बॉक्सिंग में भी हमारे 2 बॉक्सर्स कल दिखेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट साक्षी चौधरी अपने 51 kg राउंड 32 मैच में, सुबह 9 बजे और सुबह 10:30 बजे जादुमनी सिंह, यस द आर्मी मैन जादुमनी सिंह, जिनको सिल्वर मिला था कॉमनवेल्थ गेम्स में, वो चाहेंगे उस सिल्वर का कलर बदलकर, रंग बदलकर गोल्ड में कन्वर्ट करें 55 kg राउंड ऑफ 32 मैच। और बहुत एक्सपेक्टेशन है कि कल इंडिया का गोल्ड का खाता खुलेगा, क्योंकि 10:30 AM इट्स इंडिया वर्सेस श्रीलंका, अ रिपीट ऑफ द एशिया कप फाइनल। जी हां, एशिया कप में तो इंडिया ने अपना रिवेंज ले लिया श्रीलंका से, कल क्या इंडियन विमेन्स टीम अपना गोल्ड मेडल डिफेंड कर पाएंगे। उसके बाद 11:30 बजे इट्स एक्शन कीप्स ऑन कमिंग एट द एशियन गेम्स, क्योंकि इंडिया और जापान का मेंस टीम क्वार्टर फाइनल मैच है बैडमिंटन में। और 3:15 बजे एक और मेडल गारंटी हो सकता है, जी हाँ, वुशु से, क्योंकि रोशिबिना देवी अपने विमेन 60 kg क्वार्टर फाइनल मैच में लड़ेंगी। याद दिलाएं आपको, रोशिबिना देवी ने 2022 में सिल्वर जीता था, 2018 जकार्ता में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल पाया था, तो क्या इस बार रोशिबिना देवी विल गो ऑल द वे एंड गेट गोल्ड फॉर इंडिया। And then a big match to end the day. It's the 3 at 3:10. It's India versus Sri Lanka in a hockey match. India men's or women's दोनों ने धमाकेदार शुरुआत करी है. Goals are just pouring in. So hopefully we see more goals and more action. And आप आकाशवाणी पे please tune in करिए. हमारे updates सुबह 9:30 बजे से शुरू होंगे और आज 10 बजे हमारा special show भी आप सुनना, because it's been a great day for India and you can recap all that happened in a little while from now. And कल सुबह हम वापसी करेंगे 9:30 बजे with the updates every hour. Thank you so much for joining us today on the updates at Akashwani.
1: Asian Games 2026 Aichi Nagoya.
2: நேர்களை நாம் இதுவரை கேட்டோம். ஜப்பானில் நடைபெற்று வரக்கூடிய 20வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் 2026 குறித்த தினசரி கால நிலவரம். நிகழ்ச்சியில் தொடர்ந்து நம்ம பாடல் கேட்கலாம், ஆயுத எழுத்து திரைப்படத்திலிருந்து.

0: 1996.
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
2: नमस्कार, आईची नागोया से खेलों की दुनिया की बड़ी हलचल के साथ एक बार फिर से हम हाजिर हैं। जापान की धरती पर सजे एशियन गेम्स के मैदानों में आज मुकाबले और भी दिलचस्प रहे। शुरुआती मुकाबलों से मिले रोमांच के बाद अब पदकों की असली रेस रफ्तार पकड़ चुकी है। हर मैदान पर चुनौती बड़ी है, हर मुकाबला अहम है और हर खिलाड़ी की नज़र अपने लक्ष्य पर है। एशिया के 45 देशों से पहुंचे दिग्गज खिलाड़ियों के बीच भारत के खिलाड़ी भी पूरी ताकत के साथ मैदान में हैं। खेलों का ये महासंग्राम आगे बढ़ रहा है और इसके साथ बढ़ रही है देशवासियों की धड़कन। तो आइए जानते हैं आईची नागोया से आज भारत के खेल अभियान का पूरा हाल। सबसे पहले नज़र डालते हैं दिन की बड़ी सुर्खियों पर। एमएमए में भारत का ऐतिहासिक पहला पदक, सुचिका तारियाल ने जीता कांस्य। शूटिंग में भारत का शानदार निशाना, 10 मीटर एयर राइफल में 3 पदक, एशियन गेम्स में कुल 5 शूटिंग मेडल। महिला हॉकी में गोलों की बरसात, भारत ने इंडोनेशिया को 17-1 से हराया, 3 खिलाड़ियों ने लगाई हैट्रिक। कबड्डी में चैंपियन वाली शुरुआत, महिला और पुरुष टीमों ने जीते अपने अपने मुकाबले। वुशु में भारतीय खिलाड़ियों की चुनौती अभी जारी है। टेबल टेनिस मुकाबलों में पुरुष और महिला टीमों ने पाकिस्तान पर पाई आसान जीत। सेपिक टेक्रो में रोमांचक मुकाबले, टीम रेगू के ग्रुप मुकाबले में जापान ने भारत को 2-1 से हराया। अब मलेशिया से होगी अगली भिड़ंत। आईची नागोया में भारत का खेल अभियान जारी है, कहीं पदकों की चमक, कहीं बड़ी जीत और कहीं अगली चुनौती का इंतजार। सबसे पहले बात उस पदक की जिसने एशियन गेम्स में भारत

0: भारतीय एमएमए इतिहास में नया अध्याय जोड़ दिया। एशियन गेम्स 2026 में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स यानी एमएमए में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया। भारत की सुचिका तारियाल ने महिलाओं की ट्रेडिशनल 60 किलोग्राम कैटेगरी में कांस्य पदक हासिल किया। सुचिका का सेमीफाइनल मुकाबला तेओ हुई हुन के खिलाफ हुआ। मुकाबला बेहद कड़ा रहा। मैच के बाद रिव्यू में मुकाबला ड्रॉ घोषित किया गया। इसके बाद सुबह के वेइन नियम के आधार पर विजेता का फैसला हुआ। सिंगापुर की खिलाड़ी का वजन सुचिका से 700 ग्राम कम था, इसीलिए उन्हें विजेता घोषित किया गया और सुचिका को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। लेकिन यहां तक पहुंचना भी अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। इससे पहले सुचिका ने मंगोलिया की खिलाड़ी को 2-0 से हराकर पदक पक्का किया था। इससे पहले पुरुषों के ट्रेडिशनल 77 किलोग्राम वर्ग में भारत के वरुण सान्याल को अनफिट घोषित कर दिया गया था, जिसकी वजह से वो अपना क्वार्टर फाइनल मुकाबला नहीं खेल पाए। एमएमए के बाद अब रुक करते हैं शूटिंग रेंज की, जहां भारत के लिए आज का दिन बेहद खास रहा। पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में भारत ने टीम स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता, जबकि व्यक्तिगत मुकाबले में हिमांशु ढिल्लन ने सिल्वर और रुद्राक्ष पाटिल ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। पूरी रिपोर्ट के लिए चलते हैं अभिनव पुंशी के पास।
1: फैंटास्टिक डे फॉर इंडिया एज फार एज शूटिंग इज कंसर्न्ड। आईची नगोया में एशियन गेम्स 2026 में इंडिया वन द मेंस 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में इंडिया को मिला सिल्वर मेडल। द टीम कंप्राइज ऑफ रुद्रांश पाटिल, हिमांशु ढिल्लन एंड पार्थ मानेन। इसी कॉम्पिटिशन में चाइना ने गोल्ड मेडल लिया और एक रिकॉर्ड हॉल के साथ और साउथ कोरिया को मिला ब्रॉन्ज मेडल। मगर बस इसी कॉम्पिटिशन में नहीं, हमारे इंडियन शूटर्स मेड अस प्राउड इन द मेंस 10 मीटर एयर राइफल इंडिविजुअल फाइनल एज वेल। रुद्राक्ष पाटिल एंड हिमांशु ढिल्लन वाज इन द फाइनल टिल द लास्ट मिनट एंड गेव सम ग्रेट कॉम्पिटिशन टू चाइनाज जांग जियाओ। मगर रुद्राक्ष पाटिल हैड टू बी सैटिस्फाइड विद द ब्रॉन्ज, वाइल हिमांशु ढिल्लन जो अपना एशियन गेम्स का डेब्यू कर रहे थे, उनका स्कोर 252.4 से उनको मिला एक सिल्वर मेडल। सो अ फैंटास्टिक स्टार्ट फॉर द इंडियन शूटर्स सो फार। दे हैव बीन सेटिंग आईची नगोया ऑन फायर और इंडियन शूटिंग कंटिजेंट से अभी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस बाकी हैं। याद दिलाएं, हमारी ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट मनु भाकर इज आल्सो गोइंग टू बी इन एक्शन प्रीटी सून। वी आर होपिंग फॉर ग्रेट थिंग्स फ्रॉम हर एज वेल। सो ग्रेट डे फॉर इंडिया इन शूटिंग एट आईची नगोया एशियन गेम्स 2026।
0: शूटिंग के बाद अब बात उस खेल की जिसमें ताकत, रणनीति और सांस रोक देने वाला रोमांच एक साथ देखने को मिलता है। पुरुष कबड्डी में भारत ने जापान को 49-24 से हराकर ग्रुप मुकाबले में शानदार जीत दर्ज की। वहीं महिला टीम ने भी बांग्लादेश को 42-21 से मात देकर अगले राउंड में जगह बना ली। पूरी जानकारी दे रहे हैं अभिनव झा।
2: भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने अपने अभियान की शानदार शुरुआत करते हुए ग्रुप ए के मुकाबले में मेजबान जापान को 49-24 से हराया। आईची नगोया में खेले गए इस मुकाबले में कप्तान सुनील कुमार की अगुवाई में भारत ने शुरुआत से ही दबदबा बनाए रखा। आशु मलिक की 3 अंकों वाली सुपर रेड ने भारत को शुरुआती बढ़त दिलाई, जबकि अर्जुन देशवाल, देवांग दलाल और अयान लोहचब ने भी रेडिंग में प्रभावशाली प्रदर्शन किया। भारतीय टीम ने पहले हाफ में जापान पर लगातार दबाव बनाते हुए 3 ऑल आउट किए और मध्यांतर तक 31-9 की बड़ी बढ़त हासिल कर ली। दूसरे हाफ में जापान ने बेहतर रणनीति के साथ वापसी करने की कोशिश की और इस हाफ में भारत के 18 अंक के मुकाबले 15 अंक अर्जित किए, लेकिन भारतीय डिफेंस ने नियंत्रण नहीं खोया और एक और ऑल आउट के साथ जीत सुनिश्चित कर दी। भारत ने अंततः 25 अंकों के अंतर से मुकाबला अपने नाम किया और अपने एशियन गेम्स खिताब की रक्षा की शुरुआत जीत के साथ की। एशियन गेम्स में कबड्डी के इतिहास की बात करें तो भारत का इस खेल में लंबे समय से दबदबा रहा है। कबड्डी 1990 बीजिंग एशियन गेम्स में पुरुषों के पदक खेल के रूप में शामिल हुई और भारत ने उसी संस्करण में स्वर्ण पदक जीतकर अपने अभियान की शुरुआत की थी। इसके बाद भारत ने पुरुष कबड्डी में लगातार 2014 के संस्करण तक स्वर्ण पदक हासिल किए। मात्र 2018 के जकार्ता एशियन गेम्स में उन्हें कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा, लेकिन एक बार फिर 2022 हांगझाऊ एशियन गेम्स में भारत ने स्वर्ण पदक जीता। इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बीच 2026 में जापान के खिलाफ मिली जीत भारतीय टीम के खिताबी अभियान के लिए महत्वपूर्ण शुरुआत रही। वहीं अब बात करते हैं भारतीय महिला कबड्डी टीम की, जिसने 21 सितंबर को एशियन गेम्स में अपने अभियान की शुरुआत बांग्लादेश के खिलाफ ग्रुप ए मुकाबले से की, जहां भारतीय महिला टीम ने अपना दबदबा दिखाते हुए 42-21 से मैच अपने नाम किया। भारत ने मैच की शुरुआत से ही अटैकिंग अप्रोच रखी, जिसका फायदा भारत को फर्स्ट हाफ में ही 21-10 की बढ़त से मिला। वहीं दूसरे हाफ में भी भारतीय खिलाड़ियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी और 21-11 की बढ़त के साथ दूसरा हाफ खत्म किया, जिसके फलस्वरूप भारतीय महिला टीम ने 42-21 से एक आसान जीत अपने नाम की। भारत इस प्रतियोगिता में गत चैंपियन के रूप में उतरा है और 2022 हांगझाऊ एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम का लक्ष्य इस बार भी खिताब बरकरार रखना है। भारतीय टीम की

0: कप्तानी पुष्पा राणा कर रही हैं, जबकि सोनाली सिंगाटे उपकप्तान हैं। भारत ने अब तक एशियन गेम्स की महिला कबड्डी में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं और 2018 में रजत पदक हासिल किया था। इस अभियान में अगली बड़ी चुनौती 23 सितंबर को ईरान के खिलाफ होगी, जबकि 24 सितंबर को भारतीय महिला टीम का सामना जापान से होना है।
1: कबड्डी में भारतीय खिलाड़ियों ने दम दिखाया तो बैडमिंटन कोर्ट पर भी जीत का सिलसिला जारी रहा। पुरुष टीम ने बांग्लादेश को 3-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। आइए सुनते हैं साक्षी की रिपोर्ट।
2: The Indian shuttlers gave a brilliant start to India in the world of badminton in the ongoing Asian Games 2026 to help India advance to the quarterfinals. Lakshya Sen gave India the perfect start against Bangladesh in the men's team first round tie, defeating Eman Jaman in straight games 21-4, 21-12 and thereby putting India ahead in the tie. Then came Ayush Shetty, who secured another point for India in the men's team first round badminton tie against Bangladesh, defeating Gaurav Singha in straight games 21-4, 21-13, thereby taking the margin of victory overall team tie. And finally, Kidambi Srikanth gave India another strong start in the third match of the men's team badminton tie against Bangladesh, defeating Al Amin Jumar in the opening game 21-15 and later 21-9, thereby helping India secure a commanding position, defeating Bangladesh 3-0 and setting themselves up for the quarterfinals to be played against Japan.
1: अब रैकेट की तेजी से निकलते हैं हॉकी के मैदान पर, जहां भारत ने गोलों की बरसात कर दी। महिला हॉकी टीम ने इंडोनेशिया को 17-1 से हराकर पूल बी में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा। भारत की ओर से दीपिका नवनीत कौर और ऋतुजा पिसाल ने हैट्रिक दर्ज की। जानकारी दे रहे हैं अभिनव झा।
0: भारतीय महिला हॉकी टीम ने अपने शानदार अभियान को जारी रखते हुए सोमवार को पूल बी के दूसरे मुकाबले में इंडोनेशिया को 17-1 से करारी शिकस्त दी। इससे पहले भारत ने अपने शुरुआती मैच में उज्बेकिस्तान को 19-0 से हराया था। इस जीत के साथ भारत ने लगातार दूसरी जीत दर्ज की और 2 मैचों में 36 गोल किए। इंडोनेशिया के खिलाफ भारत की ओर से 7 गोल पेनल्टी कॉर्नर और 10 गोल फील्ड प्ले से आए। दीपिका ने हैट्रिक लगाकर टूर्नामेंट में अपने गोलों की संख्या 2 मैचों में 11 कर ली। नवनीत कौर और ऋतुजा ददासो पिसाल ने भी हैट्रिक पूरी की, जबकि लाल रेम सियामी, सुनेलिता टोपो और साक्षी राणा ने 2-2 गोल किए। कप्तान सलीमा टेटे और इशिका ने 1-1 गोल किया। भारत ने पहले क्वार्टर में दीपिका, सुनेलिता, लाल रेम सियामी और ऋतुजा के गोल से 4-0 की बढ़त बनाई। दूसरे क्वार्टर में लाल रेम सियामी, ऋतुजा, साक्षी, दीपिका और सुनेलिता ने गोल किए, जिससे हाफ टाइम तक भारत 9-0 से आगे था। तीसरे क्वार्टर में इंडोनेशिया की इनेस आदित्य ने 1 गोल किया, लेकिन भारत ने सलीमा, नवनीत, इशिका, ऋतुजा और दीपिका के लगातार 5 गोलों से तीसरे क्वार्टर के अंत तक 14-1 की बढ़त बना ली। अंतिम क्वार्टर में नवनीत ने 56वें और 57वें मिनट में 2 गोल कर अपनी हैट्रिक पूरी की, जबकि साक्षी ने अपना दूसरा गोल किया और भारत ने 17-1 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस मुकाबले में अनुभवी भारतीय गोलकीपर सविता ने भी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। 321 सीनियर अंतर्राष्ट्रीय मैचों के साथ वह भारत की सबसे अधिक कैप हासिल करने वाली महिला हॉकी खिलाड़ी बन गई और उन्होंने वंदना कटारिया का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया। लगातार 2 मैच खेलने के बाद भारत को मंगलवार को आराम मिलेगा और टीम बुधवार को थाईलैंड के खिलाफ अपना अगला पूल बी मुकाबला खेलेगी।
1: अब चलते हैं तैराकी की ओर, जहां भारतीय तैराकों ने आज अपनी अपनी चुनौती पेश की और अपने अपने मुकाबलों में जद्दोजहद करते हुए नजर आए। आइए सुनते हैं पूरी जानकारी साक्षी मंडवाल से।
2: It was not a good day for Indian swimmers as India's Srihari Nataraj finished 10th in the men's 50-meter backstroke final at the Asian Games 2026, clocking 25.52 seconds in the 10-swimmer medal race. China's Jiao Zhu clinched the gold medal with a new Asian Games record of 24.04 seconds, while compatriot Zicheng Wong took silver in the 24.49 seconds. South Korea's Jihan Yoon completed the podium with a bronze winning time of 24.54 seconds. All the other swimmers, Rishabh Das, Akash Mane, Heer Jitesh Shah and Dhanush Suresh failed to qualify for the finals of their respective events. Sirf yahi nahi dosto, men's 4x200 meter freestyle relay mein bhi Bhartiya swimming team ka jo pura contingent hai, yani Sajan Prakash, Anish Sunil, Kumar Gowda, Vedant Madhavan and Dakshan Shashi Kumar failed to qualify for the finals also. तो अगर देखिए ओवरऑल तो भारतीय स्विमर्स के लिए आज का दिन बहुत ही निराशाजनक साबित हुआ ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026 में।

0: खेल से निकलकर चलते हैं एक ऐसे खेल की ओर जिसमें पैर ही बनते हैं सबसे बड़ा हथियार, सेपेक टकराव। सेपेक टकराव में पुरुष टीम रेगु में जापान ने भारत को 2-1 से हरा दिया। विस्तृत जानकारी के लिए सुनते हैं अभिनव झा की रिपोर्ट।
1: भारत के पुरुष सेपेक टकराव रेगु टीम को मेजबान जापान के खिलाफ ग्रुप बी मुकाबले में 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। सेपेक टकराव में खेल का प्रारूप वॉलीबॉल जैसा होता है, लेकिन इसमें खिलाड़ियों को गेंद को हाथों से छूने की अनुमति नहीं होती। खिलाड़ी मुख्य रूप से पैर, घुटने, सिर और शरीर के अन्य हिस्सों का इस्तेमाल करके गेंद को नेट के ऊपर से विपक्षी पाले में भेजते हैं। रेगु प्रारूप में प्रत्येक टीम में 3 खिलाड़ी कोर्ट पर होते हैं और उद्देश्य गेंद को विपक्षी कोर्ट में इस तरह गिराना होता है कि सामने वाली टीम उसे वापस ना कर सके। एक टीम गेंद को अधिकतम 3 बार छूकर उसे नेट के पार भेज सकती है। सर्विस के बाद रैली जारी रहती है और हर रैली पर अंक मिलता है। सेपेक टकराव में जो टीम 3 में से 2 मैच जीतती है वो मुकाबला जीती है और हर मैच में 15-15 अंक के गेम खेले जाते हैं। जिसने पहले 2 गेम अपने नाम किया उसने 1 मैच अपने नाम किया। भारत ने शुरुआती रेगु मैच 2-0 से जीता, जिसमें भारतीय टीम ने दोनों गेम 15-13 और 15-9 से अपने नाम किए। दूसरा मैच कांटे की टक्कर का रहा, जिसमें जापान ने वापसी करते हुए पहला गेम 15-12 से अपने नाम किया, वहीं दूसरा गेम भारत ने 17-15 से अपने नाम किया। लेकिन तीसरे गेम में जापान ने बाजी मारी और 15-11 से जीतकर इस गेम के साथ मैच जीता, जिसके बदौलत ये मुकाबला तीसरे और निर्णायक मैच की ओर बढ़ा। जहां जापान ने एक तरफा तरीके से 15-9 और 15-12 से ये मैच जीत कर मुकाबले में बाजी मार ली। सेपेक टकराव 1990 बीजिंग एशियन गेम्स से ये नियमित स्पर्धा के रूप में शामिल रहा है। भारत ने एशियन गेम्स में इस खेल में अपना पहला पदक 2018 जकार्ता पालेमबांग पुरुष रेगु में कांस्य के रूप में जीता और 2022 हांगझोउ में भी कांस्य पदक हासिल किया। इस प्रकार भारत के नाम एशियन गेम्स सेपेक टकराव में अब तक 2 कांस्य पदक हैं।
0: अब बात टेबल टेनिस की। भारत की महिला और पुरुष दोनों टीमों ने पाकिस्तान के खिलाफ 3-0 की जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही भारत ने नॉकआउट चरण की राह भी मजबूत कर ली है। पूरी रिपोर्ट दे रही हैं साक्षी मांडवाल।
2: इन टेबल टेनिस बोथ द वुमेन एंड मेंस मैचेस हैपेंड टुडे। महिलाओं के टेबल टेनिस मुकाबले की अगर बात करें तो इसमें भारत का मुकाबला हुआ पाकिस्तान के साथ, जिसमें महिला टेबल टेनिस टीम ने पाकिस्तान को 3-0 से वुमेन्स टीम टेबल टेनिस टाई अप में हरा दिया। श्री जाकुला सील्ड द विक्ट्री विद स्ट्रेट गेम्स विन ओवर फातिमा खान इन अ स्कोर लाइन दैट रेड लाइक 11-4, 11-4, 11-5 एंड थेरबाय इंडिया फिनिश्ड एज ग्रुप एफ विनर्स एंड एडवांस टू द प्री क्वार्टर फाइनल्स। इस पूरे मुकाबले में एक बहुत जरूरी नाम जिसको हम बिल्कुल भी भूल नहीं सकते हैं, वो है सिंड्रेला दास का। सिंड्रेला दास का इस वर्ष एशियन गेम्स में डेब्यू हुआ है और उन्होंने पाकिस्तान की कलसूम खान को 11-6, 11-7, 11-5 से आज शिकस्त दी, जिसकी वजह से भारत को एक बहुत ही कमांडिंग पोजीशन में एक स्ट्रॉन्ग एडवांटेज पाकिस्तान के ऊपर मिल गया 2-0 का। And then came Shreeja Kula, who was able to convert that 2-0 commanding position to a 3-0 victory, thereby sealing India's win in our favor. India will now be facing Thailand tomorrow in the pre-quarterfinal match. Now let's talk about the men's table tennis match that happened today, in which India once again came face to face with Pakistan and defeated Pakistan with a scoreline that was exactly the same as the women's. Well, I'm meaning to say that India defeated Pakistan 3-0 in the men's table tennis group match at the Asian Games 2026. In match number 2, Sathyan Gunasekaran defeated Abbas Khan 11-1, 11-8, 11-9, thereby sealing match number 2 also in his name 3-0. And in match number 3, Pius Jain defeated Mohammad Khan 11-2, 11-5, 11-7, thereby sealing the third match in his name and also leading India to its victory over Pakistan by winning the third match 3-0. And thereby the Indian men's table tennis team also defeated Pakistan 3-0 in a clean sweep victory.
0: अब रुक करते हैं वुशु का, जहां तकनीक, संतुलन और हर मूवमेंट के साथ पदक की उम्मीद जुड़ी है। आज के दिन में महिलाओं के नैनक्वान इवेंट में भारत की लैंगनन टाम्बी देवी पदक की दौड़ में बनी हुई है और इनका फाइनल मुकाबला कल खेला जाना है। इससे पहले महिलाओं की चांगक्वान फाइनल में भारत की नियमन वांगसु ने हिस्सा लिया। 16 खिलाड़ियों के फाइनल में उन्होंने 9.573 का स्कोर हासिल किया और 15वें स्थान पर रही। इसके बाद वुशु के लिए आगे की चुनौती में महिला 60 किलोग्राम सांडा के राउंड ऑफ 16 में नाउरेम रोशिबिना देवी का मुकाबला बांग्लादेश की मो शिखा खातून से हुआ, जिसे विन बाय पॉइंट डिफरेंस से नाउरेम रोशिबिना देवी ने जीत लिया। वहीं पुरुषों के 56 किलोग्राम में आर्यन का मुकाबला अफगानिस्तान के शहजादा सफी से हुआ।

0: आर्यन ने भी 2-0 से जीत लिया। वुशु में तो खिलाड़ियों ने अपना दम दिखाया, लेकिन सॉफ्ट टेनिस के मिक्स डबल में आध्या तिवारी और जैमीना ने ग्रुप चरण में 2 मुकाबले जीते। हालांकि दक्षिण कोरिया से हार के बाद राउंड ऑफ 16 में फिलीपींस की जोड़ी से 2-5 की हार के साथ उनका अभियान यहीं समाप्त हो गया। पूरी जानकारी दे रहे हैं अभिनव पुंशी।
1: Let's talk now about soft tennis in Aichi Nagoya, the Asian Games 2026. And Adhya Tiwari and Jay Meena action mein the India ke liye aur unka group stage matches mein pehle match mein Mongolia ko haraya comfortably. Dusre match mein bhi jeet mili Adhya aur Jay ko, unhone haraya Cambodia ko, magar jo teesra match tha wo kaante ki takkar thi South Korea ke khilaf. Us match mein haar ka samna karna pada hamari Indian team ko, magar हारने के बाद भी साउथ कोरिया के खिलाफ इंडिया फिनिश सेकंड इन द ग्रुप एंड एडवांस करा राउंड ऑफ 16 स्टेज में। एंड राउंड ऑफ 16 स्टेज में जब आद्या और जे अपना 5वां मैच खेल रहे थे दिन का, तो इंडिया और फिलीपींस का फाइनल स्कोर था 2-5, जिससे इंडिया को हार का सामना करना पड़ा और इंडिया एडवांस नहीं कर पाए क्वार्टर फाइनल स्टेज की तरफ। और ऐसा ही था आज इंडिया का प्रदर्शन सॉफ्ट टेनिस में।
2: एशियन गेम्स में आज के मुकाबले खत्म होने के बाद चीन कल की तरह ही मेडल टैली में 23 गोल्ड, 10 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज के साथ टॉप पे बरकरार है। दूसरे पायदान पर मेजबान जापान टोटल 32 मेडल के साथ टिका हुआ है, जिसमें 8 गोल्ड, 12 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज शामिल हैं। वहीं तीसरे पायदान की कमान दक्षिण कोरिया ने 5 गोल्ड, 3 सिल्वर और 15 ब्रॉन्ज के साथ संभाली हुई है। बात करें भारत की, तो भारत 4 रजत और 2 कांस्य की मदद से कुल 6 पदकों के साथ 12वें स्थान पर बना हुआ है।
0: एशियन गेम्स के अगले दिन भारतीय खिलाड़ियों के सामने चुनौतियां भी बड़ी हैं और पदक की उम्मीदें भी। कहीं गोल्ड की जंग होगी, कहीं नॉकआउट मुकाबले और कहीं जीत के साथ अगले दौर का टिकट दांव पर होगा। अब नजरें हैं कल के खेल और भारतीय खिलाड़ियों की अगली रणनीति पर। आप जुड़े रहिए आकाशवाणी के साथ। कल सुबह ठीक 9:30 बजे से आप सुन पाएंगे एशियन गेम्स पर हर घंटे की ताज़ा जानकारी। इसके बाद हम लेकर आएंगे रात को 10 बजे पूरे दिन का लेखा जोखा। अभी के लिए प्रोड्यूसर शाहनवाज खान, एडिटर वंदना भारद्वाज के साथ मैं कविता शर्मा आपसे लेती हूं अनुमति। नमस्कार।
3: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

0: Good evening and welcome to Market Mantra. Today being Monday, we'll be taking your calls on market-related queries. But do remember that we do not address stock or company-specific queries. You can call us on our telephone numbers 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do not forget to prefix 011 before these numbers if you're calling from out of Delhi. Well, my name is Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak.
1: Namaskar, Market Mantra ki tazank mein aapka swagat hai. आधे घंटे की इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताज़ा खबरों को लेकर हाजिर हैं. आज सोमवार है और आज के दिन हमारे कार्यक्रम में आप भी हुआ करते हैं सम्मिलित. हमसे आज भी आप पूछ सकते हैं अर्थनीति, कारोबार या शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी सवाल. बस ये ध्यान रखिएगा कि हम किसी शेयर या खास कंपनी के बारे में जानकारी नहीं देते हैं. हमसे सवाल पूछने के लिए आप डायल कर सकते हैं 2331-4444, 2331-0481 या फिर 2371-7106. हमारे साथ खबरों पर चर्चा और आपके सवालों का जवाब देने के लिए स्टूडियो में आज आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार सिद्धार्थ सिंह. सिद्धार्थ जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
2: नमस्कार पाठक जी, गुड इवनिंग निशित.
1: आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइंस से जिसे लेकर मौजूद हैं निशित कुमार.
0: The benchmark domestic indices end with gains. Sensex jumps over 500 points. Nifty settles above 23,400. The country's core industries register growth of 4.8% in August this year. An India and New Zealand free trade agreement to come into force on the 20th of next month. 100% of the country's exports to get duty-free access, says Union Minister Piyush Goyal.
1: घरेलू शेयर बाजार में खरीदारी से प्रमुख सूचकांक लाभ के साथ बंद हुए. सेंसेक्स 500 अंक से अधिक उछला. निफ्टी 23,400 के ऊपर बंद हुआ. देश में इस वर्ष अगस्त महीने में 9 प्रमुख उद्योगों ने 4.8% की वृद्धि दर दर्ज की और

0: भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता अगले महीने की 20 तारीख से लागू हो जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि देश का 100% निर्यात शुल्क मुक्त हो सकेगा।
1: Before we proceed any further, here is an advisory. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashwani. Akashwani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
0: Aur ab khabron ka silsila, pehle gharelu share bazaar. घरेलू शेयर बाजार में आज निवेशकों की अच्छी खासी खरीदारी से प्रमुख सूचकांक लाभ में रहे। हालांकि व्यापक बाजारों में यह तेजी नहीं बरकरार रही। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 564 अंक यानी 0.8% बढ़कर 74,859 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 68 अंक यानी 0.3% लाभ के साथ 23,414 दर्ज हुआ। विस्तारित बाजार में सेंसेक्स और निफ्टी पैक की तुलना में बिकवाली देखी गई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स 0.3% घाटे में रहा, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स में मामूली गिरावट दर्ज हुई।
1: सो बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसेस एंडेड इन द पॉजिटिव जोन टुडे। द सेंसेक्स सर्ज 564 पॉइंट्स और 0.8% टू क्लोज एट 74,859। द निफ्टी आल्सो गेन्ड 68 पॉइंट्स और 0.3% टू सेटल एट 23,414। The broader market at the National Stock Exchange ended lower. The Nifty Mid-Cap 100 Index lost 0.3%, while the Nifty Small-Cap 100 Index edged down marginally. Earlier, the markets opened higher and maintained positive momentum throughout the session amid softer crude oil prices and global bond yields.
0: नजर डालें सेंसेक्स पैक पर तो 30 में से 24 कंपनियों के शेयर आज लाभ के साथ बंद हुए। सबसे अधिक फायदा अल्ट्राटेक सीमेंट को हुआ, जिसमें 4.1% की वृद्धि हुई। HCL टेक को 3.4% का और इंटरनल को 2.6% का लाभ हुआ। इसके विपरीत घाटा उठाने वालों में सबसे ऊपर भारतीय एयरटेल के शेयर रहे, जिसमें 1.9% की गिरावट हुई। पावर ग्रिड को 1.2% का और इंफोसिस को लगभग 1% का नुकसान हुआ।
1: And in the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 20 out of 28 sectors edged upward. Among the top gainers, realty increased 1.7%, consumer durables rose 1.6%, and healthcare added 1.1%. In contrast, telecommunication lost 1.6%, mid-small private banks equity tilt dropped 0.5%, and mid-small private banks fell 0.4%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was negative, as shares of 2,243 companies declined, 2,213 advanced, and 250 remained unchanged.
0: नजर डाल लें यदि रुपए पर तो रुपए में आज थोड़ी सी मजबूती आई है। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया 6 पैसे मजबूत हुआ, 95.82 रुपए पर बंद हुआ।
1: And we are joined in by our first caller from Mumbai, Mukund. Mukund, welcome. Namaskar. सवाल
2: नमस्कार, मुझे ये पूछना है सर जी, एससी सीनियर सिटीजन सेविंग का अकाउंट अगर मैच्योर हो गया है तो उसको कंटिन्यू करने में मैं कितने महीने तक की बात कर सकता हूँ, वो वैल्यूएबल रह सकता है, 6 महीना 10 महीना या 1 साल, ये मुझे पता करना है आपसे।
3: मुकुंद जी एक बार अपना सवाल दोबारा दोहरा पाएंगे?
1: सिद्धार्थ जी, मुकुंद जी ये पूछ रहे थे कि जो सीनियर सिटीजन की जो स्कीम होती है पोस्ट ऑफिस वगैरह में गवर्नमेंट स्कीम्स होती है, उसको री इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये कितने समय तक, कितने टेनर के लिए कर सकते हैं, 6 महीने 8 महीने 10 महीने या साल भर के लिए, ये प्रश्न था उनका।
3: नहीं मुकुंद जी, देखिए जहां तक सीनियर सेविंग सेविंग स्कीम्स की बात है, उस पर कोई ऐसा आपको प्रावधान नहीं है कि आपके ऊपर कोई रोक है, आप उसको री इन्वेस्ट बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन समय रहते जरूर री इन्वेस्ट कर दें उस फाइनेंशियल ईयर में जब वो मैच्योर हुआ हो, तो उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। जब आप करना चाहें आप बिल्कुल कर सकते हैं, और बाकी जो डिटेल्स हैं वो जरूर आप अपने पोस्ट ऑफिस या बैंक में जाएं, लेकिन उस स्कीम में कोई इस तरह की रोक नहीं है कि समय की कोई पाबंदी नहीं है, आप रीइन्वेस्ट बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन समय रहते कर दें, खासकर जिस फाइनेंशियल ईयर में वो मैच्योर

0: हुई है उसी के उसी के उसी दौरान कर दें।
1: बाजार में आज की गतिविधि पर हम आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहें सिद्धार्थ जी, तो कुल मिलाकर किन अर्थों में ले रहे कारोबार को, लिवाली हुई है, निफ्टी में थोड़ी कम रही है और सेंसेक्स में भी कोई खास बड़ी लिवाली नहीं है, लेकिन लिवाली का सिलसिला शुरू हो रहा है, बाजार का कारोबारी सप्ताह के पहले दिन बढ़त के साथ बंद होना किन किन कारणों के से संभव हुआ है?
0: नहीं देखिए मनु जी, मुझे लगता है इंडियन मार्केट्स में एक जो हमारा अपना मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स है वो तो बहुत अच्छे हैं, जो भी डेटा हो, चाहे वो आपका जीडीपी का डेटा हो, इन्फ्लेशन थोड़ा चिंता का सबब बना है खासकर क्योंकि क्रूड ऑयल की कीमतें ज़्यादा हैं, लेकिन जो अभी भी जो हमारी मार्केट्स में इंडियन मार्केट्स पे जो जो इस समय दुनिया भर में चल रहा है, खासकर जो युद्ध अमेरिका और ईरान का युद्ध है और क्रूड ऑयल की उसकी वजह से जो तेल की कीमतों में जो तेज़ी है, और दूसरा भी आप देखेंगे जियोपॉलिटिकल रशिया यूक्रेन अभी भी कहीं जो युद्ध चल रहा है वो कहीं समाप्ति की ओर नहीं है, साथ साथ अभी हाल फिलहाल में आप देख रहे होंगे अमेरिका और चीन दोनों के राष्ट्रपतियों की एक बड़ी बैठक होनी है 23 तारीख को, तो उसके लिए भी जो तैयारियां चल रही हैं जोर शोर से, तो मुझे लगता है एक वो बड़ा कारण है। लेकिन जो मार्केट में आज तेजी, मुझे लगता है लोगों में एक विश्वास आत्मविश्वास थोड़ा लौटा होगा क्योंकि थोड़ा क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम हुए हैं, अमेरिका में भी जो रेट हाइक होना था जिसको लेके एक बाजार में एक प्रेशर बना हुआ था कि रेट हाइक होगा तो उसके बाद एफआईआईज का क्या रिएक्शन होगा, तो आज अच्छी बात यह है कि आज की मार्केट में एफआईआईज ने भी खरीदारी की है, तो और डोमेस्टिक रिटेल इन्वेस्टर लगातार उनका विश्वास और डोमेस्टिक जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनका भी विश्वास भारतीय बाजारों में है, तो मुझे लगता है सप्ताह की शुरुआत है अच्छी शुरुआत है और कहीं ना कहीं मुझे ये मोमेंटम बना रहेगा ये थोड़ा अभी कहना मुश्किल है क्योंकि ये प्रेशर एक जो बाहरी जो भी जियोपॉलिटिकल कंडीशंस हैं उनका प्रेशर इंडियन मार्केट्स पे अभी भी है
1: जी। आइए चलें मुंबई से ही आमंत्रित करें रत्नाकर जी को। रत्नाकर जी स्वागत है आपका, सवाल पूछिए।
2: हेलो, गुड इवनिंग सर। यही सवाल था कि इसके बावजूद अमेरिका का जो 100% टैक्सेशन है तो उसके बावजूद भी आज मार्केट 600 अंश बढ़ गया, तो उसका एक रीजन क्या हो सकता है और ये जो बढ़ने का सिलसिला आगे भी चालू रहेगा क्या? पर दूसरा सवाल है कि आईटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के क्या मायने रखते हैं? थैंक यू।
0: देखिए रत्नाकर जी, जहाँ तक आपने अमेरिका के वो जो अमेरिका में जो बिल पास हुआ है, जो नया कानून आया है कि 100% टैरिफ लगा देंगे उन देशों पे जो रूस से तेल खरीदेंगे, तो अभी ट्रंप साहब ने उस पर रजामंदी जरूर दे दी है, लेकिन अभी उस पर आगे उन्होंने कोई कार्रवाई निश्चित नहीं की है कि क्या किन देशों पर लगेगा, कितना लगेगा, तो अभी तक वो स्थिति क्लियर नहीं है और मुझे नहीं लगता कि हमारी बाजार ने आज जो रिएक्शन था उसकी किसी वजह से था। हाँ, ये ज़रूर है कि अमेरिकन बाजारों में जो वहाँ बॉन्ड यील्ड्स हाई थी, वहां की महंगाई को लेके वो थोड़ा नरम पड़ी है, साथ ही साथ जो क्रूड ऑयल की कीमतें हैं उनमें भी नरमी आई, तो कहीं ना कहीं बाजार में उसकी वजह से आज तेजी हमने देखी। और आपका एक और सवाल था
1: आईटी सेक्टर,
0: तो आईटी सेक्टर पे मैं तो यही बोलूंगा कि मैं आज भी बुलिश हूँ इंडियन आईटी सेक्टर पे, और आईटी जो शेयर्स हैं उनकी काफ़ी पिटाई हो चुकी है और मुझे लगता है जैसा आप सुन भी रहे होंगे देख भी रहे होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सारी दुनिया में बात हो रही है, लेकिन उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं उसको लेके भी अब बातचीत शुरू हो गई है और दुनिया में जो बड़े देश जो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो अग्रणी देश हैं खासकर अमेरिका और चीन के बीच में भी जो उनके राष्ट्रपतियों की बात होनी है उसमें एक विषय यही होने वाला है, तो मुझे लगता है कि और मेरा मानना है कि हिंदुस्तान की आईटी कंपनीज अभी भी अच्छी हैं, रोबस्ट हैं और अच्छे लेवल्स पे आपको मिल रही हैं, तो मुझे मेरा पूरा विश्वास है कि अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बिल्कुल कहूंगा कि इसमें निवेश करें, लेकिन हाँ ये जरूर कहूंगा कि थोड़े थोड़ा निवेश करें।
3: नेक्स्ट कॉलर इज सुभाष फ्रॉम फरीदाबाद। सुभाष
4: नमस्कार। सर मैं ये जानना चाहता था कि ये आज की मार्केट का जो बढ़त हुई है उसका क्या रीजन हो सकता है? और दूसरा सर, मैंने आईटीआर भरा था और मुझे रिफंड भी मिल गया है सर, तो इसका मैं मान लूं क्या कि मेरा आईटीआर प्रोसेस हो गया है?
0: नहीं, आपको रिफंड मिल गया है या नहीं मिला? आपने
4: रिफंड मिल गया है सर, मुझे सब कुछ मेरे पास अकाउंट में आ गया है, मेरे क्रेडिट हो गया।
0: नहीं देखिए, तो मेरा मानना यह है कि अगर आपको रिफंड मिल गया है तो ब्रॉडली ये मान लिया जाए कि जो भी आपने अपनी डिक्लेरेशन की है अपने आईटीआर में तो वो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट ने उसको मान लिया है, और साथ साथ वो एक जब भी आपका आईटीआर प्रोसेस होता है तो एक आपको मैसेज भी आया होगा, तो आप उस पर भी ध्यान दें, बट अगर आपको रिफंड मिल गया है तो ये आप निश्चिंत रहें

0: आपके तरफ से जो भी आपने आईटीआर में डिक्लेरेशन की है अपनी इनकम की, उसको डिपार्टमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया है, और उसमें अब कोई, मुझे नहीं लगता कोई इशू होगा। और दूसरा सवाल आपने जो पूछा था मार्केट आज के ऊपर थी, उसके ऊपर अभी हमने पहले भी चर्चा की थी कि चूंकि आज अमेरिकी बाज़ारों में और जो बॉन्ड यील्ड्स हैं या हिंदुस्तान में भी जो बॉन्ड यील्ड्स हैं उनमें थोड़ी नरमी आई है, कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल की कीमतें जो कि जियोपॉलिटिकल टेंशन दुनिया में बने हुए उसकी वजह से जो उनमें तेज़ी थी जो $100 का, तो वो भी थोड़ा नरमी आई है, वहाँ भी $100 के आसपास कीमतें आई हैं। तो जो इमीडिएट रीज़न वो यही दो कारण जो लगते हैं। और तीसरा मुझे लगता है क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था की जो मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं वो काफ़ी सुदृढ़ हैं, तो ये बेसिक कारण थे जो आज बाजार में हमने तेज़ी देखी।
1: श्रोताओं, आपसे एक आग्रह है कि जिस समय आप हमसे सवाल पूछते हैं उस समय ऑनलाइन पर आप जुड़े होते हैं तो रेडियो की आवाज़ धीमी कर लीजिए, वरना आपके रेडियो की आवाज़ हम तक इको के रूप में पहुंचते रहती है, जो आपकी आवाज़ सुनने में, सवालों को सुनने में थोड़ी सी मुश्किलें ले आ सकती है।
2: कंटिन्यूइंग

0: फोन लाइन पर आप जुड़े होते हैं तो रेडियो की आवाज धीमी कर लीजिए, वरना आपके रेडियो की आवाज हम तक इको के रूप में पहुंचते रहती है, जो आपकी आवाज सुनने में, सवालों को सुनने में थोड़ी सी मुश्किलें ले आ सकती है.
1: कंटिन्यूइंग सिद्धार्थ विद द मार्केट conditions today, and talking of Fed, of course we saw a 25 basis point kind of upward tick in the last Fed meet. There are also murmurs, talks of another kind of uptick in the coming month, that is October. This is one, and of course we discussed, you know, in the opening section that US is kind of, we see that it's closing up to China. It has led out, you know, the red carpet for the Chinese president. And the third, of course, Mr. Trump also kind of making statements, though in a very subtle way, that the US-Iran skirmish is kind of entering the last phase. He would be taking some final decision in the coming days. How do you see all this thing, these three kind of big news in totality, affecting the market in the coming days?
2: See, Nishit, I think the origin of all the three points that you raised is not within our macroeconomic setup. So basically, coming to your question of Fed rate hike, I think everybody is factoring in another rate hike of 25 basis points,
1: yes,
2: by Fed. And I think also there is now a greater possibility of our own central bank also in the next monetary policy, which is early October. They may also may also go for tightening, and because inflation has been inching month after month, obviously basically because of the high crude oil prices. So
1: we might
2: have a rate hike in India also. And the fact that the US and China are trying to, you know, work together, I think, yes, because US has its own interest of trade, you know, attracting their own trade, selling their own agriculture produce to China. Plus, they're also expecting huge investments. So I think these are two big factors. Plus, I think there is also a kind of agreement between the two on how to go forward in terms of artificial intelligence. Because US has always been accusing China of stealing their artificial intelligence, what software or whatever, the kind of concepts or whatever they are developing is being copied by the Chinese. So I think both sides have had a very detailed ministerial level meetings which have happened. They've been able to work together, and I think those are 2-3 major concerns for both of them. So I think and they seem to be reaching some kind of a consensus.
0: आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं. श्रोताओं, आपको लिए चलते हैं अब वैश्विक बाजारों की ओर. सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां खरीदारी अच्छी खासी होने से दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.7% लाभ में रहा. उधर जापान में सार्वजनिक अवकाश के कारण शेयर बाजार बंद रहा. यदि हम आज के एशियाई बाजारों पर ध्यान दें तो लगभग हर जगह अच्छी खासी खरीदारी रही है. क्या रुख दर्शा रहा बाजार में, यदि विश्वास यूरोप में भी और एशियाई बाजार में भी और भारत में अपने यहाँ भी तेजी है, तो कोई खास वजह?
2: मनोज जी, मुझे लगता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द प्राइमरी रीजन, खासकर एशियन मार्केट, जैसा कि आपने कहा कॉस्पी में, जापान में. तो मुझे लगता है इट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. और जो पीछे से जो अमेरिका और चीन के बीच में जो बातचीत हो रही है, और उसमें भी ये बात सामने निकल के आ रही है जो कि दोनों के बीच में, अमेरिका और चीन के बीच में जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट, जो उनके इश्यूज हैं व्यापार को लेके, निवेश को लेके, और साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके, जो अमेरिका हमेशा कि उनके जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको चोरी कर रहा है चीन, तो उस पर मुझे लगता है किसी तरह की रजामंदी बनती हुई लग रही है. तो यही मुझे लगता है कारण है तेजी के.
0: जी, दिल्ली से हमारे साथ इस बीच फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं अविनाश. स्वागत है आपका अविनाश जी, सवाल पूछिए.
3: नमस्कार मार्केट मंत्र टीम को, नमस्कार. मेरा
0: जी नमस्ते.
3: मेरे हाँ दो क्वेश्चन है एक्चुअली. अगर हम इंडियन रुपीज से यूएसडीटी, मतलब क्रिप्टो, अगर खरीदते हैं, मतलब क्रिप्टो करेंसी, तो हमें टीडीएस देना हुआ क्या? और अगर क्रिप्टो करेंसी से बस बाद में हम जैसे और कोई मतलब परचेज करें अपना क्रिप्टो, जैसे नेक्सा वगैरह हो गया, तो उस पर भी हमको हमारा टीडीएस लगेगा नहीं लगेगा? और कितने टाइम में हमको ये टीडीएस जमा करना होगा, ये जानना था प्लीज.
2: नहीं अविनाश जी, देखिए जहाँ तक आपके क्रिप्टो करेंसी का जो भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे, उसको आपको अपने इनकम या जो भी आपकी उससे इनकम होगी, जो भी आपको मुनाफा होगा.

0: या घाटा होगा, जो भी आपकी वैल्यू उसकी निकलती है उसको आपको अपने आईटीआर में दर्शाना होगा और अब आपको उसकी डिक्लेरेशन करनी होगी। ऐसा कोई टीडीएस देना होगा ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ उसके उससे अगर आपको कोई भी इनकम अगर उस जिस भी कारोबारी साल में आप वो करते हैं ट्रांजैक्शन, तो उसको आपको अपने जो इनकम टैक्स का जो भी आप डिक्लेरेशन करेंगे, इनकम टैक्स जो फॉर्म भरेंगे एनुअल, तो उसमें आपको उसके बारे में उसकी जानकारी जरूर देनी होगी।
1: राइट, नेक्स्ट कॉलर इज रवि नारायण फ्रॉम भिलाई, वेलकम।
2: रवि जी आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं भिलाई से, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए।
3: नमस्ते मार्केट मित्रा।
2: नमस्ते।
3: मेरा क्वेश्चन है कि ये एफआईआई जो है इस महीने जो है 71,000 करोड़ रुपए कुछ तो बता रहे थे उसका जो है विड्रॉ कर लिया है, ऐसे ही लगातार विड्रॉ करते जा रहे हैं, और डीआईएस जो है और जो इंडिविजुअल्स हैं वो सब एसआईपी के कारण से जो है वो ऑफसेट हो रहा है, कॉम्पनसेट हो रहा करके वहां तक तो ठीक है, इसका हमारे इकोनॉमी में डायरेक्ट क्या इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि ये तो निवेश तो कंपनी में हो रहा है और कंपनी का परफॉर्मेंस जो है वो जो है हमारे इकोनॉमी को सुदृढ़ या वीक करेगा, तो इसका डायरेक्ट इकोनॉमी से क्या रिलेशनशिप है ये जानना चाह रहा हूँ। थैंक यू।
0: नहीं देखिए रवि नारायण जी, जो आपका सवाल है ये बिल्कुल सही है, पिछले 2-2.5 साल से हम देख रहे हैं लगातार जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं जिनको हम विदेशी निवेशक बोलते हैं मोटे तौर पे, वो भारतीय बाजारों से अपना पैसा निकाल रहे हैं, हालांकि पीछे जो बॉन्ड्स में जो हमने टैक्स कुछ एग्जेम्पशन दिए थे उनको उसके बाद हमने देखा था कि बॉन्ड मार्केट में जरूर निवेश एफआईआईस का बढ़ा था, लेकिन देखिए एक मूलभूत जो उनका सिद्धांत है निवेश का एफआईआईस का वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। तो जब अमेरिकी बाजार में हम देखते हैं कि अगर वहां पे जो है इंटरेस्ट रेट्स अगर बढ़ रहे हैं, उनकी बाजार भी अच्छी कर रही है साथ साथ, जैसे अभी आपने मार्केट मंत्रा में सुना होगा मनोज जी बात कर रहे थे कि जो एशियन बाजार हैं, एशिया की बाजार हैं, चाहे वो कॉस्पी हो या चाहे वो हैंगसेंग हो या निकेई हो, वहां पे भी वो जो बाजार हैं वो अच्छा कर रही हैं, तो वो शायद इसलिए उनको लगता है कि उनको इस समय पे वहां निवेश करके ज्यादा पैसा कमा पाएंगे तो इसलिए वो जा रहे हैं। इसका भारतीय अर्थव्यवस्था के पे कोई प्रश्न लग रहा हो या उस पर कोई खराब उसका इम्पैक्ट होगा मुझे नहीं लगता, हमारे मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स बिल्कुल सुदृढ़ हैं, बहुत मजबूत हैं।
1: राइट, एंड सम अदर स्टोरीज, द कंबाइंड इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज आईसीआई रिकॉर्डेड क्यूमुलेटिव ग्रोथ ऑफ 4.8% ईयर ऑन ईयर इन ऑगस्ट, दिस इज स्लाइटली लेस देन द डाउनवर्डली रिवाइज्ड ग्रोथ रेट ऑफ 5% रिकॉर्डेड इन जुलाई अकॉर्डिंग टू प्रोविजनल एस्टिमेट्स released by the Ministry of Commerce and Industry today, 5 out of 9 core sectors recorded positive growth last month. Among these, cement production grew by 12.5%, electricity generated increased by 11.6%, iron ore production rose by 5.5%, steel production increased by 3.4%, and refinery products output rose by 2.6% on an annual basis. On the other hand, fertilizer production declined by 12.4%, natural gas production dipped by 4.9%, coal production decelerated by 3.8%, and crude oil production dropped by 3.6% in August, year-on-year basis.
2: दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं केशव। केशव जी स्वागत है आपका, सवाल पूछिए।
4: नमस्कार।
2: नमस्ते।
4: एक्सपर्ट से मैं ये जानना चाहूंगा, जैसे मार्केट में गोल्ड मिलता है वो होता है पीले रंग का, उसका रेट बता दिया जाता है, और मार्केट में भी व्हाइट गोल्ड मिलता है, उसके एक गोल्ड और होता है कलर उसका पिंक होता है, क्या इनके रेट कुछ बताते हैं, व्हाइट वाले का और येलो से महंगा होता है, पिंक वाले का भी अलग रेट होता है, इसके बारे में कुछ रेट के बारे में बता पाएंगे कि ऐसा होता है तो ऐसा क्यों होता है।
0: नहीं केशव जी देखिए, जो जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं तो गोल्ड का एक ही रंग या जो ट्रेड होता है गोल्ड वो वही होता है जो येलो गोल्ड जिसको हम लोग बोलते हैं, जो बाजार में एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ गोल्ड है, तो मुझे नहीं लगता कि ये जो पिंक गोल्ड या जो भी इस तरह के कुछ होंगे जो ग्रे मार्केट में ट्रेड करते होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। मेरी आपको सलाह यही होगी कि आप जो येलो गोल्ड और खासकर कोशिश करें कि किसी रजिस्टर्ड सेलर से ही खरीदें।
1: An India and New Zealand Free Trade Agreement FTA will come into force from the 20th of October this year on the occasion of Vijayadashmi. Addressing a press conference in New Delhi today, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said that the agreement will provide duty-free access for 100% of Indian exports to New Zealand.
5: This strategic partnership and the roadmap to 2030 reflects our shared ambition to deepen this cooperation and includes the aspirational goal

0: doubling bilateral trade in goods and services to almost 35,000 crore rupees in the next 4 or 5 years. The entry into force of the India-New Zealand Free Trade Agreement will translate this goal into concrete economic outcomes. It is an important moment for our businesses, for our farmers, for our exporters and MSMEs, for our professionals and consumers who will all benefit from the commitments undertaken in this agreement, and also facilitates significant investments of $20 billion over the next 15 years from New Zealand to India.
1: And India and Canada have agreed to fast-track negotiations for a comprehensive economic partnership agreement, SEPA, with the next round of talks set to commence on the 5th of October. Union, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said that the next 90 days could be a defining period in bilateral relations. And on the Lindsey O'Graham sanctioning Russia and Iran Act of 2026, Piyush Goyal said that more details of the act are emerging now. He said India will study them and discuss the matter at an appropriate time.
2: स्पीच हमारे साथ फरीदाबाद से रंजन जी आ चुके हैं कार्यक्रम में. स्वागत है आपका रंजन, सवाल पूछिए.
3: नमस्ते सर, ये इसके बारे में बताएंगे, फेड ने रेट बढ़ाए हैं, रिजर्व बैंक बढ़ाएगा जरूर, मेरे ख्याल से बढ़ाएगा, आपके ख्याल से भी क्या विचार है, बढ़ाएगा जरूर, बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा, और उसका प्रभाव इक्विटी पे, मार्केट पे, शेयर मार्केट पे क्या पड़ेगा, और मुख्य तौर पे बैंकिंग सेक्टर पे, पीएसयू एंड प्राइवेट बैंक्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इनके डिपॉजिट रेज होंगे या इनके शेयर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, बता सकते हैं?
4: नहीं देखिए रंजीत जी, जैसा कि आपको पता ही है, फेड ने रेट इंक्रीज किए हैं और हमारे सेंट्रल बैंक आरबीआई का भी ऐसा माना जा रहा है कि चूंकि महंगाई दर लगातार महंगाई बढ़ रही है, तो शायद उसको कंटेन करने के लिए हमारे यहाँ भी कुछ 25% तक जो है रेट हाइक अक्टूबर की पॉलिसी में आरबीआई कर सकता है. और जहाँ तक उसके निगेटिव इम्पैक्ट का, मुझे नहीं लगता 25 basis points का कोई बहुत ज़्यादा बाजार पर कोई बहुत निगेटिव इम्पैक्ट होगा. हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि शायद आप अगर बैंकों में डिपॉजिट्स करते हो तो कुछ डिपॉजिट रेट आपको थोड़ा डिपॉजिट्स में थोड़ा सा इजाफा हो. हालांकि मेरा ये मानना है इस समय लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, तो डिपॉजिट रेट भी इस समय बढ़ेंगे मुझे ऐसा लगता नहीं.
2: आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं. नया मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR फ्रेमवर्क अगले महीने की 15 तारीख से लागू हो जाएगा. इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस लेनदेन पर ₹2,000 तक का लेनदेन मुफ्त रहेगा. इस पर कोई MDR चार्ज लागू नहीं होगा. श्रोताओं, आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि MDR को आखिरकार क्यों लागू किया जा रहा है. दरअसल UPI के तहत बड़े पैमाने पर हर महीने धन का लेनदेन हो रहा है. उदाहरण के लिए पिछले महीने UPI के माध्यम से लोगों ने 2400 करोड़ों से अधिक बार UPI का उपयोग करते हुए 30 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि का लेन देन किया. नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने कहा है कि MDR से प्राप्त राजस्व का उपयोग UPI इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए इसके भागीदारों के साथ किया जाएगा, ताकि इसके ढांचे में नवाचार, स्थिरता, साइबर सिक्योरिटी और उपभोक्ता सेवा को बेहतर बनाया जा सके. सरकार से प्राप्त वार्षिक सब्सिडी से संबंधित पक्ष को रखते हुए NPCI ने कहा कि ये व्यवस्था लघु अवधि फंडिंग के लिए की गई है. हमारे साथ इस बीच दिल्ली से रजत जी आ चुके हैं. रजत जी, स्वागत है आपका, सवाल कीजिए.
5: नमस्कार जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपका मोबाइल ऐप, कई मोबाइल ऐप्स हैं जो सिल्वर में और गोल्ड में इन्वेस्ट करती हैं, इसमें क्या ऐप है गुल्लक करके एक ऐप है जो एक्चुअली टेक्स द फॉर द सिल्वर एंड गोल्ड, सो हाउ सेफ आर दीज एप्लीकेशन टू इन्वेस्ट इन पर्चेस?
4: नहीं देखिए रजत जी, जहाँ तक आपका सवाल है, देखिए अगर वो सेबी रजिस्टर्ड कोई भी ऐप है, तो अगर उससे रजिस्टर्ड है तो वो उसमें कोई खतरा नहीं है. लेकिन उस पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से करिएगा, क्योंकि आजकल इंटरनेट की जो दुनिया है उस पर धोखाधड़ी बहुत ज़्यादा है. तो मेरी सलाह होगी कि बहुत ध्यान से, सावधानी से करें जो भी करें.
1: Moving on to crude, the global crude oil prices declined today. Brent crude was trading 2.5% down at $101.26 per barrel in the intraday trade at the time of writing this report. Meanwhile, the West Texas Intermediate crude was also trading 2.5% lower at $97.75 per barrel.

0: आभूषण निर्माता संघ के आंकड़ों के अनुसार भारतीय सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोने का मूल्य 0.2% घटकर 1,53,337 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था। चांदी 2,34,992 रुपये प्रति किलो पर चल रही थी। श्रोताओं की ओर से सिद्धार्थ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आप दोनों को भी धन्यवाद।
2: Thank you so very much, Siddharth. And before we close, a reminder of the headlines. The benchmark domestic indices end with gains. Sensex jumps over 500 points. Nifty settles above 23,400. Country's core industries register growth of 4.8% in August this year. An India-New Zealand free trade agreement to come into force on the 20th of next month. 100% of the country's exports to get duty-free access, says Union Minister Piyush Goyal. And that's all we have in this edition of Market Mantra from the entire team here. It's goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
4: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.
5: நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது 100.1 MHz ஆகாஷ்வாணி சென்னை எஃப்எம் கோல்ட்.
6: எஃப்எம் கோல்டு நிலை நேரம் 11:40. திரைக்கானம் கேட்கலாம். என்னென்ன திரைப்படத்துக்காக டி எம் சவுந்தரராஜன் பி சுசீலா பாடிய பாடல்.

0: தோள் கொடுப்பதில் தோழனாய், கற்றுக் கொடுப்பதில் ஆசானாய், வழிகாட்டுவதில் சான்றோனாய். சிறியவர் பெரியவர், இளைஞர்கள் பெண்கள் இவர்களின் முன்னேற்றத்தில் உங்கள் அகில இந்திய வானொலி. அனைத்து இயற்கை சீற்றங்களிலும் சிதையாமல் உங்களுடன், அனைத்து இடர்பாடுகளிலும் இடைவிடாமல் உங்கள் சேவையில் அகில இந்திய வானொலி, என்றும் உங்கள் நலனில்.
1: எஃப்எம் கோல்டில் இன்னும் சில நொடியில் தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள்.
2: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே சர் ஃபிரோசி. भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को विजयदशमी पर लागू होगा. नई दिल्ली में कल वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड के लिए भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त होगा. उन्होंने कहा कि ये रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा को दर्शाती है.
3: This strategic partnership.
4: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है. इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है. भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी.
2: श्री गोयल ने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 20 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है. ये समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोलेगा. इससे सेवाओं, निवेश और पेशेवर, छात्र और युवा आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे और रोजगार के अवसर खुलेंगे.
3: It is an important moment for our businesses.
5: हमारे व्यवसायों, किसानों, निर्यातकों और MSMEs, पेशेवर तथा उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है. इन सभी को इस समझौते के अंतर्गत की गई प्रतिबद्धताओं से लाभ मिलेगा. ये समझौता न्यूजीलैंड से भारत में अगले 15 वर्षों के दौरान 1,91,000 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश का मार्ग प्रशस्त करता है. इसके अलावा कृषि उत्पादकता साझेदारी की स्थापना करता है, जिसके अंतर्गत न्यूजीलैंड की तकनीक को भारत के बड़े पैमाने और बढ़ती मांग के साथ जोड़ा जाएगा.
3: मीट इंडिया स्केल एंड ग्रोइंग डिमांड.
2: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति व्यक्त की है. वार्ता का अगला दौर 5 अक्टूबर से शुरू होगा. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगले 90 दिन दोनों देशों के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं. अमरीका के भारी भरकम शुल्क लगाने वाले कानून पर श्री गोयल ने कहा कि भारत इसका अध्ययन करेगा और उचित समय पर इस मुद्दे पर चर्चा करेगा. रक्षा मंत्रालय ने नई दिल्ली में पुणे की एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए. ये अनुबंध रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में किया गया. सहायक विद्युत इकाइयां APU टैंक के फायर कंट्रोल सिस्टम, फायरिंग सर्किट, गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम और अन्य सहायक उपकरणों के लिए विद्युत शक्ति उत्पादन का एक वैकल्पिक स्रोत है. ये अनुबंध सरकार के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है और एक मजबूत, आत्मनिर्भर और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय रक्षा उद्योग के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात के 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं. राष्ट्रपति आज एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी. लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के विश्व के सबसे बड़े स्टैचू के लिए मशहूर गुजरात के एकता नगर में पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह आयोजित किया जाएगा.

0: சில நொடிகள் தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को विजयादशमी पर लागू होगा। नई दिल्ली में कल वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड के लिए भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त होगा। उन्होंने कहा कि ये रणनीति साझेदारी दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा को दर्शाती है।
2: This strategic partnership.
3: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
1: श्री गोयल ने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 20 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ये समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोलेगा। इससे सेवाओं, निवेश और पेशेवर, छात्र और युवा आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे और रोजगार के अवसर खुलेंगे।
2: It is an important moment for our businesses.
4: हमारे व्यवसायों, किसानों, निर्यातकों और MSMEs, पेशेवर तथा उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इन सभी को इस समझौते के अंतर्गत की गई प्रतिबद्धताओं से लाभ मिलेगा। ये समझौता न्यूजीलैंड से भारत में अगले 15 वर्षों के दौरान 191,000 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके अलावा कृषि उत्पादकता साझेदारी की स्थापना करता है, जिसके अंतर्गत न्यूजीलैंड की तकनीक को भारत के बड़े पैमाने और बढ़ती मांग के साथ जोड़ा जाएगा।
2: मीट इंडिया स्केल एंड ग्रोइंग डिमांड।
1: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति व्यक्त की है। वार्ता का अगला दौर 5 अक्टूबर से शुरू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगले 90 दिन दोनों देशों के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अमरीका के भारी भरकम शुल्क लगाने वाले कानून पर श्री गोयल ने कहा कि भारत इसका अध्ययन करेगा और उचित समय पर इस मुद्दे पर चर्चा करेगा। रक्षा मंत्रालय ने नई दिल्ली में पुणे की एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। ये अनुबंध रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में किया गया। सहायक विद्युत इकाइयां APU टैंक के फायर कंट्रोल सिस्टम, फायरिंग सर्किट, गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम और अन्य सहायक उपकरणों के लिए विद्युत शक्ति उत्पादन का एक वैकल्पिक स्रोत है। ये अनुबंध सरकार के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है और मजबूत, आत्मनिर्भर तथा विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय रक्षा उद्योग के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। राष्ट्रपति आज एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के विश्व के सबसे बड़े स्टैचू के लिए मशहूर गुजरात के एकता नगर में पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय ने आई स्टेम पोर्टल को लेकर राज्य सरकारों के नोडल अधिकारियों की पहली बैठक आयोजित की। बैठक का उद्देश्य राज्यों की भागीदारी बढ़ाने और सार्वजनिक धन से तैयार वैज्ञानिक सुविधाओं का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना था। बैठक की अध्यक्षता प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय की वैज्ञानिक सचिव डॉ परविंदर मैनी ने की। इसमें 23 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के नोडल अधिकारियों ने हिस्सा लिया। जापान

0: भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को विजयादशमी पर लागू होगा। नई दिल्ली में कल वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड के लिए भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त होगा। उन्होंने कहा कि ये रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा को दर्शाती है।
1: This strategic partnership.
2: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
0: श्री गोयल ने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 20 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ये समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोलेगा। इससे सेवाओं, निवेश और पेशेवर, छात्र और युवा आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे और रोजगार के अवसर खुलेंगे।
1: It is an important moment for our businesses.
3: हमारे व्यवसायों, किसानों, निर्यातकों और MSMEs, पेशेवर तथा उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इन सभी को इस समझौते के अंतर्गत की गई प्रतिबद्धताओं से लाभ मिलेगा। ये समझौता न्यूजीलैंड से भारत में अगले 15 वर्षों के दौरान 191,000 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके अलावा कृषि उत्पादकता साझेदारी की स्थापना करता है, जिसके अंतर्गत न्यूजीलैंड की तकनीक को भारत के बड़े पैमाने और बढ़ती मांग के साथ जोड़ा जाएगा।
1: मीट इंडिया स्केल एंड ग्रोइंग डिमांड।
0: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति व्यक्त की है। वार्ता का अगला दौर 5 अक्टूबर से शुरू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगले 90 दिन दोनों देशों के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अमरीका के भारी भरकम शुल्क लगाने वाले कानून पर श्री गोयल ने कहा कि भारत इसका अध्ययन करेगा और उचित समय पर इस मुद्दे पर चर्चा करेगा। रक्षा मंत्रालय ने नई दिल्ली में पुणे की एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। ये अनुबंध रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में किया गया। सहायक विद्युत इकाइयां APU टैंक के फायर कंट्रोल सिस्टम, फायरिंग सर्किट, गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम और अन्य सहायक उपकरणों के लिए विद्युत शक्ति उत्पादन का वैकल्पिक स्रोत है। ये अनुबंध सरकार के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप हैं और मजबूत, आत्मनिर्भर तथा विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय रक्षा उद्योग के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। राष्ट्रपति आज एकतानगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के विश्व के सबसे बड़े स्टैचू के लिए मशहूर गुजरात के एकतानगर में पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पेयजल और स्वच्छता विभाग ने कल राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ पहली राष्ट्रीय ऑनलाइन बैठक की। इसका उद्देश्य जल जीवन मिशन के दूसरे चरण के अंतर्गत ग्रामीण पेयजल व्यवस्था के संचालन और रखरखाव के लिए कुशल कार्यबल तैयार करना था। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार बैठक में नल जल मित्र कार्यक्रम शुरू करने पर चर्चा हुई। इसके तहत गांव स्तर पर तकनीशियनों को जल आपूर्ति व्यवस्था के संचालन और रखरखाव का प्रशिक्षण दिया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने हाई स्पीड और नियंत्रित प्रवेश वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की योजना और डिजाइन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ये जानकारी दी। जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में कल 3 और पदक जीत लिए। 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक जीता। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में आज भारत का सामना मेजबान जापान से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Ashish P. Abraham.

0: இதுவரை நெஞ்சம் மறப்பதில்லை கேட்டீர்கள். இனி தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்திகள். டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்கலாம்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே சர் ஃபிரோசி. भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को विजयादशमी पर लागू होगा. नई दिल्ली में कल वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड के लिए भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त होगा. उन्होंने कहा कि ये रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा को दर्शाती है.
2: This strategic partnership.
3: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है. इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है. भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी.

0: into concrete economic outcome.
1: श्री गोयल ने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 20 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ये समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोलेगा। इससे सेवाओं, निवेश और पेशेवर, छात्र और युवा आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे और रोजगार के अवसर खुलेंगे।
0: It is an important moment for our businesses.
2: हमारे व्यवसायों, किसानों, निर्यातकों और MSMEs, पेशेवर तथा उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इन सभी को इस समझौते के अंतर्गत की गई प्रतिबद्धताओं से लाभ मिलेगा। ये समझौता न्यूजीलैंड से भारत में अगले 15 वर्षों के दौरान 191,000 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके अलावा कृषि उत्पादकता साझेदारी की स्थापना करता है, जिसके अंतर्गत न्यूजीलैंड की तकनीक को भारत के बड़े पैमाने और बढ़ती मांग के साथ जोड़ा जाएगा।
0: मीट इंडिया स्केल एंड ग्रोइंग डिमांड।
1: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति व्यक्त की है। वार्ता का अगला दौर 5 अक्टूबर से शुरू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगले 90 दिन दोनों देशों के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अमरीका के भारी भरकम शुल्क लगाने वाले कानून पर श्री गोयल ने कहा कि भारत इसका अध्ययन करेगा और उचित समय पर इस मुद्दे पर चर्चा करेगा। रक्षा मंत्रालय ने नई दिल्ली में पुणे की एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। ये अनुबंध रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में किया गया। सहायक विद्युत इकाइयां APU टैंक के फायर कंट्रोल सिस्टम, फायरिंग सर्किट, गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम और अन्य सहायक उपकरणों के लिए विद्युत शक्ति उत्पादन का वैकल्पिक स्रोत है। ये अनुबंध सरकार के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है और एक मजबूत, आत्मनिर्भर तथा विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय रक्षा उद्योग के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। राष्ट्रपति आज एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा के लिए मशहूर गुजरात के एकता नगर में पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल विज्ञान मंत्रालयों और विभागों के बीच बेहतर समन्वय, शहर आधारित वैज्ञानिक समूह विकसित करने और देश की वैज्ञानिक उपलब्धियों को व्यापक स्तर पर लोगों तक पहुंचाने पर बल दिया। डॉ. सिंह ने नई और प्रभावशाली वैज्ञानिक उपलब्धियों की लगातार पहचान करने और उन्हें सामने लाने पर भी बल दिया। अमरीकी वाणिज्य विभाग ने भारत से आयात होने वाले वेल्डेड स्टेनलेस स्टील पाइप की जांच में प्रारंभिक फैसले की समय सीमा बढ़ा दी है। पहले फैसला 8 अक्टूबर तक आना था, जिसे अब बढ़ाकर 14 दिसंबर तक कर दिया गया है। इस जांच में तुर्की से होने वाला आयात भी शामिल है। अमरीका ये पता लगा रहा है कि क्या भारत और तुर्की के उत्पादकों को उनकी सरकारों से सब्सिडी या वित्तीय मदद मिली है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में कल 3 और पदक जीत लिए। वहीं भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में आज भारत का सामना मेजबान जापान से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी। The news read by Ashish P. Abraham. India and New Zealand Free Trade Agreement will come into force from 20th of October this year on the occasion of Vijayadashmi. Addressing a press conference in New Delhi yesterday, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said the agreement will provide duty-free access for 100% of Indian exports to New Zealand.
0: This strategic partnership and the roadmap to 2030 reflects our shared ambition to deepen this cooperation and includes the aspirational goal of doubling bilateral trade in goods and services to almost 35,000 crore rupees in the next 4 or 5 years. The entry into force of the India-New Zealand Free Trade Agreement will translate

0: அடுத்ததாக வசந்த்ராவ் ராண்டே அவர்களின் வயலினிசை கேட்கலாம்.
1: आइए कार्यक्रम के आरंभ में सुनते हैं वायोलिन वादन। कलाकार है वसंत राव रानड़े। आपने प्रस्तुत किया है वायोलिन पर राग अभोगी। विलंबित रचना झपताल में निबद्ध है। आइए सुनते हैं वसंत राव रानड़े का वायोलिन वादन राग अभोगी।

श्रोताओं, हम सुन रहे हैं वसंत राव रानड़े का वायलिन वादन। अभी आपने सुना राग अभोगी। आइए अब सुनते हैं वसंत राव रानड़े द्वारा वायलिन पर प्रस्तुत पहाड़ी धुन।

0: இதுவரை இனிய ராகம் கேட்டீர்கள். இனி ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே சர் ஃபிரோசி. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात की तीन दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। राष्ट्रपति आज एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा के लिए मशहूर गुजरात के एकता नगर में पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित दो दिन के सम्मेलन में आने वाली पीढ़ियों को मादक पदार्थों के खतरों से बचाने के लिए कार्य योजना पर विमर्श होगा। सम्मेलन में स्वापक नियंत्रण 2026-2029 के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में कार्यबल की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। गृह मंत्री लखनऊ और देहरादून में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो जोन के नए परिसरों की आधारशिला भी रखेंगे। मंत्रालय ने बताया कि सम्मेलन में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कार्यबल प्रमुखों के साथ अन्य संबंधित सरकारी विभागों और हितधारकों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को विजयदशमी पर लागू होगा। नई दिल्ली में कल वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत

0: गत न्यूजीलैंड के लिए भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त होगा। उन्होंने कहा कि ये रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा को दर्शाती है।
1: This strategic partnership.
2: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
0: श्री गोयल ने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 20 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ये समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोलेगा। इससे सेवाओं, निवेश और पेशेवर, छात्र और युवा आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे और रोजगार के अवसर खुलेंगे।
1: It is an important moment for our businesses.
3: हमारे व्यवसायों, किसानों, निर्यातकों और MSMEs, पेशेवर तथा उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इन सभी को इस समझौते के अंतर्गत की गई प्रतिबद्धताओं से लाभ मिलेगा। ये समझौता न्यूजीलैंड से भारत में अगले 15 वर्षों के दौरान 191,000 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके अलावा कृषि उत्पादकता साझेदारी की स्थापना करता है, जिसके अंतर्गत न्यूजीलैंड की तकनीक को भारत के बड़े पैमाने और बढ़ती मांग के साथ जोड़ा जाएगा।
1: मीट इंडिया स्केल एंड ग्रोइंग डिमांड।
0: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति व्यक्त की है। वार्ता का अगला दौर 5 अक्टूबर से शुरू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगले 90 दिन दोनों देशों के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अमरीका के भारी भरकम शुल्क लगाने वाले कानून पर श्री गोयल ने कहा कि भारत इसका अध्ययन करेगा और उचित समय पर इस मुद्दे पर चर्चा करेगा। रक्षा मंत्रालय ने नई दिल्ली में पुणे की एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। ये अनुबंध रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में किया गया। सहायक विद्युत इकाइयां APU टैंक के फायर कंट्रोल सिस्टम, फायरिंग सर्किट, गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम और अन्य सहायक उपकरणों के लिए विद्युत शक्ति उत्पादन का वैकल्पिक स्रोत हैं। जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में कल 3 और पदक जीत लिए। 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक जीता। वहीं भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में आज भारत का सामना मेजबान जापान से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Ashish P. Abraham. India and New Zealand free trade agreement will come into force from 20th of October this year on the occasion of Vijayadashmi. Addressing a press conference in New Delhi yesterday, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said, the agreement will provide duty-free access for 100% of Indian exports to New Zealand.
1: This strategic partnership and the roadmap to 2030 reflects our shared ambition to deepen this cooperation and includes the aspirational goal of doubling bilateral trade in goods and services to almost 35,000 crore rupees in the next 4 or 5 years. The entry into force of the India-New Zealand Free Trade Agreement will translate this goal into concrete economic outcomes.
4: Mr. Goyal said the agreement will greatly benefit India's MSMEs, farmers, handicraft and handloom artisans and will create new employment opportunities. The Commerce Minister informed that New Zealand has committed to invest 2 lakh crore rupees in India as foreign direct investment under the FTA. India and Canada have agreed to fast-track negotiations for a Comprehensive Economic Partnership Agreement, CEPA, with the next round of talks set to commence on 5th of next month. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said the next 90 days could be a defining period in the bilateral relations with Canada. Mr. Goyal said he held the fourth round of negotiations with his Canadian counterpart in Mumbai last

0: இதுவரை பொங்குமங்கலம் நிகழ்ச்சியில் திருவிழா ஆர் ஜெய்சங்கர் அவர்களின் நாகஸ்வர இசை கேட்டீர்கள். வலையப்பட்டி ஏஆர் சுப்பிரமணியம் அவர்கள் தவில்.
1: தொடர்வது டெல்லி அஞ்சல்.
2: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே வைஷ்ணவி. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात की 3 दिन की आधिकारिक दौरे पर है। राष्ट्रपति आज एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के लिए मशहूर गुजरात के एकता नगर में पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुखों के 3रे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित 2 दिन के सम्मेलन में आने वाली पीढ़ियों को मादक पदार्थों के खतरे से बचाने के लिए कार्य योजना पर विमर्श होगा। सम्मेलन में स्वापक नियंत्रण 2026-29 के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में कार्यबल की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। गृह मंत्री लखनऊ और देहरादून में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो जोन के नए परिसरों की आधारशिला भी रखेंगे। मंत्रालय ने बताया कि सम्मेलन में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कार्यबल प्रमुखों के साथ अन्य संबंधित सरकारी विभागों और हितधारकों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को विजयादशमी पर लागू होगा। नई दिल्ली में कल वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड के लिए भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त होगा। उन्होंने कहा कि ये रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा को दर्शाती है।
3: This strategic partnership.
4: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
2: श्री गोयल ने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 20 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ये समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोलेगा। इससे

0: सेवाओं, निवेश और पेशेवर, छात्र और युवा आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे और रोजगार के अवसर खुलेंगे।
1: It is an important moment for our businesses.
2: हमारे व्यवसायों, किसानों, निर्यातकों और MSMEs, पेशेवर तथा उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इन सभी को इस समझौते के अंतर्गत की गई प्रतिबद्धताओं से लाभ मिलेगा। ये समझौता न्यूजीलैंड से भारत में अगले 15 वर्षों के दौरान 1,91,000 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके अलावा कृषि उत्पादकता साझेदारी की स्थापना करता है, जिसके अंतर्गत न्यूजीलैंड की तकनीक को भारत के बड़े पैमाने और बढ़ती मांग के साथ जोड़ा जाएगा।
1: मीट इंडिया स्केल एंड ग्रोइंग डिमांड।
0: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति व्यक्त की है। वार्ता का अगला दौर 5 अक्टूबर से शुरू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगले 90 दिन दोनों देशों के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अमेरिका के भारी भरकम शुल्क लगाने वाले कानून पर श्री गोयल ने कहा कि भारत इसका अध्ययन करेगा और उचित समय पर इस मुद्दे पर चर्चा करेगा। रक्षा मंत्रालय ने नई दिल्ली में पुणे की एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। ये अनुबंध रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में किया गया। सहायक विद्युत इकाइयां APU टैंक के फायर कंट्रोल सिस्टम, फायरिंग सर्किट, गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम और अन्य सहायक उपकरणों के लिए विद्युत शक्ति उत्पादन का एक वैकल्पिक स्रोत है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में कल 3 और पदक जीत लिए। 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में हिमांशु ढिल्लों ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक जीता। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में आज भारत का सामना मेजबान जापान से होगा। मौसम विभाग ने तटीय आंध्र प्रदेश, झारखंड और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Ashish P. Abraham. India and New Zealand free trade agreement will come into force from 20th of October this year on the occasion of Vijayadashmi. Addressing a press conference in New Delhi yesterday, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said, the agreement will provide duty-free access for 100% of Indian exports to New Zealand.
1: This strategic partnership and the roadmap to 2030 reflects our shared ambition to deepen this cooperation and includes the aspirational goal of doubling bilateral trade in goods and services to almost 35,000 crore rupees in the next 4 or 5 years. The entry into force of the India-New Zealand Free Trade Agreement will translate this goal into concrete economic outcomes.
3: Mr. Goyal said the agreement will greatly benefit India's MSMEs, farmers, handicraft and handloom artisans and will create new employment opportunities. India and Canada have agreed to fast-track negotiations for a comprehensive economic partnership agreement, with the next round of talks set to commence on 5th of next month. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said the next 90 days could be a defining period in the bilateral relations with Canada. Mr. Goyal said he held the fourth round of negotiations with his Canadian counterpart in Mumbai last week, during which both countries decided to accelerate the pace of negotiations. On the Lindsey O'Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026, Mr. Goyal said more details of the act are emerging now. He said India will study them and discuss the matter at an appropriate time. Union Home Minister Amit Shah will inaugurate the third National Conference of Anti-Narcotics Task Force, Heads of States and Union Territories in New Delhi today. The 2 days conference, which will be organized by the Narcotics Control Bureau, NCB, will serve as a powerful platform to safeguard future generations from the menace of drugs. Based on the theme, United Resolve, Shared Responsibility, the conference will discuss the role of the ANTFs in attaining the envisaged vision of Narcotics Control 2026-2029.